हा जी हा साईं मुंहिंजा प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान नेमत अल्लाह जूणे जो तव्हां सभिनी खे वरी बि ईद जूं लख लख मुबारकूं। तव्हां असांजे नाला लिखी मोकिले सघो था असांजे इनबॉक्स में फेसबुक ते ऐं असांजे नंबर ते तव्हां नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0333221322888। कोई बि सवाल कोन्हे को जवां सां ऐं तव्हांजा सिर्फ़ सिर्फ़ नाला हलाईंदासीं ऐं तव्हां जूं ईद मुबारकूं अव्हां जे दोस्तनि ताईं पहुचाईंदासीं। कॾहिं बि न वञो, तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-55-69।

0: टी क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाजार खां ॿाहिरि या दस्तियाब
1: टू मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
0: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
0: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां ॿाहिरि दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
0: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100

में भी दुबारा लिखी सको था जेकॾहिं जंहिंखे सहूलियत आहे त इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते पंहिंजो एल आर के लिखी स्पेस ॾींदो स्पेस बाजो पंहिंजो नालो ऐं पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखी करे तव्हां ईद मुबारक लिखंदव 888 ते तव्हां सेंड कंदव ऐं फेसबुक जे आई डी ते बि तव्हां असां ॾे ईद मुबारक मोकिले सघो था ऐं असांजे स्टूडियो नंबर आन आहे तव्हां केॾी महिल बि कॉल करे पंहिंजो नालो लिखाए सघो था ईद मुबारक लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0333-2132-2288 ऐं साईं जा ॻाल्हि कंदासीं त हर इंसान जी ज़िंदगी में ख़ुशियूं ऐं मौक़ा अचनि था पर इज्तिमाही ख़ुशी ईद जे ॾींहुं मिले थी ऐं ईद मल्हाइण जा तौर तरीक़ा हर इंसान वटि पंहिंजा पंहिंजा हूंदा आहिनि ऐं का ईद माण्हू दोस्तनि सां गॾु मल्हाए थो त का ईद दिलि दिलि में मुसरतूं पखेड़ी वेंदी आहे ऐं ईद अखियुनि जी ईद हूंदी आहे ऐं अखियुनि जे ईद जे ॾींहुं तॾहिं ईद थींदी आहे जॾहिं पंहिंजा पहिरीं प्यारा पंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं हुजनि ऐं उहे जोड़ा पाण सां गॾु हुजनि उहे महबूब पाण सां गॾु हुजनि छो त जोड़ा अलाह साईं आसमान ते ठाहींदो आहे ऐं उहे असां ज़मीन ते जोड़ा पंहिंजा महबूब हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि ऐं उहे जोड़ा ठहंदा ई आसमान ते आहिनि।

हा जी एसवन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबुह ऐं मां जो मेज़बान ने मतिलब आहे जूणे जो अवां सां गॾु गॾु प्रोग्राम रोशन ईद जो रोशन सुबुह अवां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं असां सभिनी खे ईद मुबारकूं असांजा जेका बि असांजे जी एफ एम 88 जा इंचार्ज आहिनि ऑफिसर साहिबु आहिनि रीजनल मैनेजर आहिनि ऐं असांजा कोआर्डिनेटर आहिनि सभिनी जे तरफ़ां जेकी असांजी टीम आहे सभिनी जी एफ एम 88 जे टीम तरफ़ां

सभिनी ॿुधंदड़नि खे जेके असांजो प्रोग्राम पूरी सिंध में ॿुधनि पिया, कचे में, पके में ऐं जाबलू इलाइक़े में ॿुधनि था, शहर में, वस्ती वाण में प्रोग्राम ॿुधनि पिया, सभिनी खे ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौक़े ते दिलि जे गहरनि सां ईद मुबारकूं। ऐं साईं मुंहिंजा हाणे अव्हां जा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं, जेके असांखे दोस्तनि फ़ोन ते लिखी रहिया आहिनि। भाग्यो खान शर आहे ॻोठु आज़मदीन शर मीरपुर ख़ासि खां, हाफिज़ लखमीर ढिलू मोरे खां ऐं उन सां गॾु दोस्त आहिनि हाफिज़ सांवल ढिलू, ताहिर लुंडो ऐं इमदाद अली शाह उन सां गॾु आहिनि, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। अहमद नवाज़ गोरी कंबर खां उन सां भाउ गॾु आहे तारिक ऐं शोएब, इमदाद शाह बखनो वाकिल खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी, ऐं पनवाकिल खां ई ॻोठु आहे सुमराणी इंदड़, सुमराणी इंदड़ खां आहे हाफिज़ अमीन अलाए काज़ी, ऐं आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी माहौटन खां क़ुर्बान अली ख़ासकीली, ऐं शेज़र महल लाड़ेकाणे खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं कुझु दोस्त आहिनि ॻोठु मोलेरणे माशी लॻे वॾनि महरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं मुख्तियार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु अहमद खान लाशारी लॻे धुणनि खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठु हसू जतोइन खां महमद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसर लाइ जतोई। त समिन ईद जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो अव्हां दोस्त जे नाम।

ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो। भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं सजादुल्ला जमाली ॻोठु मोहम्मद हसन जमाली नवाब शाह खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। हुन सां गॾु आहिनि भाउ अली गुल जमाली ऐं अली जमाली, हुन सां गॾु प्रोग्राम ॿाहिरि ॿुधनि पिया। हुननि जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर चांडियो, अहसन अकबर चांडियो, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो। ऐं ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाप सखर लॻ सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो फ़क़ीर ऐं फ़क़ीर असांजो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार जतोई, हरसा जी गढ़ी कोरकाणनि खां सुमर फ़क़ीर कोरकाणी, ऐं मीरपुर ख़ासि खां भाउ असांजो अब्दुल अज़ीज़ सोलंगी प्रोग्राम ॿुधे पियो। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। त समय खूबसूरत नगमो आहे, अवां दोस्तनि जी नाम पिया कयूं।

हाजी है समय ने प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबह जारी उसारी है तवाजो असो साथ रहो ठीक यारहें वगे तई एन वक्त हलूँ पाया न्यूज़ ब्रेक की तरफ ए कमर्शल ब्रेक की तरफ वापस इंदी कदें भी न वो।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: ईदुल्ज़ुहा जे पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जे प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफ़ा पांजनि समूरनि कस्टमर्स दोस्तन ऐं अज़ीज़न वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिलि जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश कजे थी।
2: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तआवुन सां पेश कयो वियो।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-8359।
4: अदा
5: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
0: अपना शहर, अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: जुलाई 0333 2619

कहिड़े कम जा, पर इन खां अॻु में अवां ताईं पहुचाईंदासीं दिलदार भिड़े जो शायरीअ जूं चंद सिटूं आहिनि। आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, आहे ॾुखी हयाती तोखां परे परे, तोखां सवाइ हिकिड़ी नसात सरे सरे, मांदो रहे थो मन ऐं अखियूं सदा भिनल, सिक तुंहिंजी में जिस्म पियो ॻरे ॻरे, ख़्वाहिश उहा ई आहे हिकु बीमार जी, ज़ुल्फ़नि जा ॾे शांवरा अंदरि ठरे ठरे, नफ़रत जा नांग मारे महबूब मुर्क सां, अच कुर्ब जा क़दम खे सॼण भरे भरे, ॾे को अची सहारो दुनिया जे सीर में, ॾे को अची सहारो दुनिया जे सीर में, दिलदार यार अबड़ो थी न ख़ुदा तरे तरे। साईं मुंहिंजा दिलदार साहिब जो ग़ज़ल अवां ताईं पहुचायोसीं, ऐं हाणे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॾिसूं पिया, ॿुधूं पिया त छा पियो चवे।

जी असमिन प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबुह, ऐं ईद जो रोशन सुबुह असांजो पहिरीं प्यारो घोट प्रोग्राम ॿुधे पियो। मसूद अली जतो ई असांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, उनखे शादी जूं मुबारकूं बि ऐं उनखे ईद जूं बि मुबारकूं। त साईं मुंहिंजा जेका इहा ईद आहे, ईद उल अज़हा आहे, ऐं ईद उल अज़हा क़ुर्बानी जी जेको आहे सो ईद आहे, ऐं क़ुर्बानी अलाह ताला जे आॾो झुकण जो नालो आहे। ऐं साईं मुंहिंजा हीअ जेका क़ुर्बानी वारी ईद आहे सुनत इब्राहिमी आहे, ऐं बिल्कुलु सुनत इब्राहिमी जे करे जेको आहे सो गोश्त कयो वञे थो उज़हा, जंहिंमें वॾो ढोर बि थी सघे थो, गाहो ढोर बि थी सघे थो, ऐं उठ बि गोश्त क़ुर्बानी थींदो आहे। बकरे जी आम क़ुर्बानी अक्सर बकरे वारी ईद बि सॾी वेंदी आहे ईद उल उज़हा खे। त साईं मुंहिंजा ईदूं पयूं थींदियूं, ऐं जेकॾहिं जीअर आहिनि त सभु पिया मिलंदा, पर वरी ई नगमो अवां दोस्तनि जी नाम पिया कयूं। ऐं साईं मुंहिंजा कुझु नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं। मेहर अली कलोड़ो कंडियारे खां, हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो खोड़ा गंबट खां, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ रिंद, इमरान रिंद, सदाम रिंद, ॻोठ जीअंद रिंद जेकाबाद खां,

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8091
1: छो परेशान आई
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मिरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

जी हा समन अहिड़ो कहर न कजो ऐं पंहिंजे दिलि ते कंट्रोल कजो, ऐं कंट्रोल न कंदो त तव्हांजी जेका दिलि आहे उहा स्लिप थी वेंदी ऐं जेको आहे सो माण्हू वञी किरंदो, अलाह ख़ैरु कंदो। तव्हां कोशिशि कयो ऐं साईं जा कुझु नाला आहिनि दोस्तनि जा जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। राशिद अवाण मेरापुर खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ ईद जो मुबारकूं ॾिए पियो, दुआऊं ॾिए पियो, भाउ जी वॾी महिरबानी। इरशद अली कोराई, मोहम्मद कोराई ऐं नंढो मोहसिन कोराई बैतुल माल कॉलोनी लाड़काणे खां, ऐं ॻोठु पुनल कोराई कचे खां, ॻोठु पुनल कोराई कचे खां बहावल खान अला बख्श कोराई नवीद चनो आहे घोटकी खां, भाउ जी वॾी महिरबानी। नवाब राहू जो मुदसर मुज़म्मिल आफ़्ताब मुसविर राहू जो ऐं आलम खान चांडियो ॻोठु मीराणी चांडियनि खां, ऐं जजलाज लाड़काणे खां अब्दुल गनी अबड़ो शाहिद लतीफ़ हफ़ीज़ रहमान शेख ऐं असांजो मसूद जतोई ऐं जिनसार ओढो प्रोग्राम ॿुधनि पिया, ॿाहिरां जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठु घाड़ी वारा शेख लॻे लाड़काणो गुलशेर मंगरियो बि प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं दादू खां मीर हज़ार खान लवश सुमेर अली ऐं आफ़्ताब खुश्क प्रोग्राम ॿुधनि पिया, साईं जी वॾी महिरबानी। ऐं साईं मुंहिंजा ईद जी जेका ख़ुशियूं आहिनि उहे निरालियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं हज वारी ईद आहे, उज़ाह वारी ईद आहे, ऐं क़ुर्बानी वारी ईद आहे, ऐं हीअ जेका ईद आहे उहा असांखे पंहिंजो सबक थी ॾिए त तव्हां कंहिंजे आॾो न झुको, सिर्फ़ु हिकु अलाह जे आॾो झुको, ऐं माण्हुनि सां चङा ई कंदा रहो, ऐं कंहिंजी दिलि न ॾुखायो। ऐं सुनत इब्राहिमी आहे जेका क़ुर्बानी बकरे वारी ईद, ऐं साईं मुंहिंजा कोशिशि कयो तव्हां गोश्त अकेलो न खाओ, ऐं तव्हां पंहिंजनि में ऐं पंहिंजे मिटनि माइटनि में बि विरिहायो, हिकु हिसो ग़रीबनि में मिसकिननि में फ़क़ीरनि में बि विरिहायो। ऐं साईं मुंहिंजा कुझु दोस्त अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तमामु घणो गोश्त फ्रिजनि में रखी करे खाईंदा आहिनि, महीने ताईं खाईंदा आहिनि, पर मां तव्हांखे हिकिड़ो नुस्ख़ो ॿुधायां थो जेको तमामु घणो वक़्तु गोश्त हले ऐं तव्हांखे उनजो फ़ाइदो तमामु घणो पवे, त उहो फ़ाइदो इहो आहे त कुझु हिसो ग़रीबनि में मिसकिननि में विरिहायो, जेको अव्हांजो क़यामत ताईं कमु ईंदो, ऐं उहो सवाबु अव्हांखे हमेशह पियो मिलंदो। ऐं एतिरो रखी न खाओ त बहितरु आहे, ॿियनि खे बि वंडियो विरिहायो। हज वारी ईद आई आहे, ऐं हज वारी ईद में बिल्कुलु क़ुर्बानी आहे, क़ुर्बानी जो गोश्त आहे, ऐं गॾिजी खाओ, ऐं हीउ कलाम वरी गॾिजी ॿुधूं पिया, इंजॉय कयूं पिया हज वारी ईद।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जी हा समिन प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा आखिरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा नाला वहां ते पहुचाईंदासीं ऐं दोस्त ईद मुबारक हुजनि पिया ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी असांजा दोस्त आहिनि पंहिंजो ममंद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार उमेद अली कुंभार हाले पुटरा स्टाप मीरपुर ख़ास खान जो जलोरी ॻोठु आहे ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ऐं नजीबुल्ला बिरोही बि नजीबुल्ला बिरोही बि भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो लख कुर्ब भाउ जा ऐं असांजो

वरी मेहरबानी लख कुर्ब त समय आखिरी प्रोग्राम जे लमन में अवां के वरी खूबसूरत नगमो बुधायूं था ऐं तव्हां एंजॉय कंदा रहियो असांखे वरी सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नेमतला जुणे जो खे वरी हयाती रही त इनशाला सुभाणे 9 बजे अवां सां ईद शो में गॾु हूंदासीं तेसीं ताईं अलह निगहबान।

0: नागपुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जे प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफा पांजन समूरन कस्टमर्स दोस्तन ऐं अज़ीज़न वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां मुबारकबाद पेश कजे थी।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राबते 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर।
7: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301399236।
0: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: वही सबसे पहला सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है, ये उनके लिए है जो परदेसी दोस्त जो हैं हमारे आउट ऑफ कंट्री में हैं, अपने पाकिस्तान से बाहर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। तो सनस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी हमारे जो परदेस में रहने वाले दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, वैसे जदीद हो रहा चुका है, लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं लाइव, लेकिन जो फीलिंग्स जो फैमिली के बीच में होती है वो दूर से नजर आती है।
1: वो मोबाइल से या ऑनलाइन से कभी भी फीलिंग्स शेयर नहीं होती। हाँ, आप फेस देख सकते हैं लेकिन आप दिलों का हाल तो सामने बैठ के ही जान सकते हैं। तो ईद जो है, ईद अपनों के बिना होती ही नहीं है ना। कहते हैं चांद तो नजर आ गया लेकिन किसी ने चांद देख के ईद भी कर ली, लेकिन हमारा तो चांद, हम चांद ही देखते रहे ना कि चांद कहाँ है हमारा। तो ये चीजें होती हैं, जब चांद ही नहीं देखेंगे कहाँ से करेंगे।
0: उन तमाम चांदों के लिए ये अच्छा सा सॉन्ग मैंने स्पेशली डेडिकेट किया है। ईद आ गई और मेरा यार नहीं आया।

0: गयो मेरा यार नहीं आया। ओके जी, आप सुन रहे हैं ईद की बातें और ईद की बातों के साथ मैं हूं आपका दोस्त आपका बेली आरजे शहबाज बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे सना। जी आरजे सना, वैसे जो परदेश में रहते हैं जो परदेशी होते हैं, आपको पता है कि परदेश में जब आप चले जाते हैं तो कुछ दोस्त काफी ऐसे भी मैंने रिश्ते देखे हैं, बल्कि जितने भी हमारे कुछ रिलेटिव भी हैं, खुदा ना खास्ता जब बंदा अपने रिश्तों से बिल्कुल दूर चला जाता है, एक तो परदेश होता है, एक परदेश में रहकर उसको खबर जब होती है कि जो उसका अपना इस दुनिया में नहीं रहा, तो जब वो कंडीशन
1: उसकी जो फीलिंग्स होती है, वो कहता है मैं उड़ के चले जाऊँ ना, आसमान क्रॉस करके चले जाऊँ, मैं उसको देख लूँ जाकर। और बाय चांस ऐसा होता भी है कि वो देखने चाहता है, उसको वीजा मिल भी जाए, एरोप्लेन में बैठने लगता है ना, और कभी फ्लाइट मिस हो जाए, कभी एक घंटा लेट हो जाए। रिसेंटली दो दिन पहले आई हूँ फ्लाइट से, दो घंटे लेट हुई थी, तो मैं तो बैठी थी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस बंदे की जो फीलिंग है ना, वो बंदा वहीं खड़े खड़े मर जाना है उसने।
0: भाई,
1: ये फीलिंग होती है।
0: ये तो बात बिल्कुल हकीकत है, मैं इस चीज को एग्री करना चाहता हूँ। अभी तकरीबन कोई 3-4 साल हुए, बल्कि ये जो 2026 है, जो बाजायद सिर्फ मैं अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सखर में नहीं रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान का हर कोना कोना हमने घूमा है ना।
1: सही बात है
0: कि जब कोई मजबूरी पड़ जाती है, जब कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती है, जब बंदा कहता है कि यार मैं आंखें बंद करूं और खोलूं, मैं अपने घर में मौजूद हूं,
1: तो
0: जब ऐसी कंडीशन के अंदर जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आपका जो सफर है वो तवील हो जाता है,
1: बहुत लंबा हो जाता है, चाहे एक ही दिन क्यों ना वो गुजर ही नहीं रहा होता।
0: चले भाई, अभी तो हमने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन मेरा यार नहीं आया, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। तो भाई आपने सना को बताना ये है कि आपने किस जानवर की कुर्बानी की। हमारा जो लाइव कॉलेज नंबर है,
1: मुझे तो नहीं
0: आपने नोट करना है, सना बिल्कुल आप लोगों से नाराज है, क्योंकि सना को आपने राजी करना है, सना को आपने बताना है कि आपने कौन से जानवर की कुर्बानी की है। और हमारा कॉलिंग नंबर है जनाब 03000113488 पे हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है। नदीम आवाज लोने वाली की आवाज में बड़ा जबरदस्त ट्रैक मैंने प्ले किया है, ईद आ गई और मेरा यार नहीं आया।

0: चौधरी जी, मेरे लस्सी दमा खड़े थे अत्याचार की तो सरकार ना मैसेज ना मिस कॉल आई में सु यार। तो भाई जैसे सना मैं बात करता कुर्बानी के हवाले से, तो कुर्बानी के लिए जो है अगर आप बात करें जब हम छोटे होते थे बिल्कुल ही जब अनमेच्योर होते थे तो हमें बड़ा शौक होता था भाई कुर्बानी आ रही है और कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं। और हमारे यानी कि हमारे इलाके के अंदर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं पर जो है वो गायें ज़िबा हो रही है, कहीं पर बकरे ज़िबा हो रहे हैं और कहीं पर ऊंट जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी है तो हम हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सुन्नत इब्राहिमी के अंदर जो है हमने वो तमाम सुन्नत को अमल यानी कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए जो कि हमारे ऊपर लागू है। अच्छा मैं एक चीज़ ये करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, बल्कि काफ़ी बड़े बड़े जानवर भी, अच्छा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह की रजा में राजी होकर खुद पर खुद जो है नॉर्मली तरीके के साथ जो है वो ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ इतने बड़े जिद्दी जानवर होते हैं खुदा ना खास्ता बड़े नुकसान भी होते हैं, और आपने सोशल मीडिया पर देखा भी है कि कुछ बड़े नुकसान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे कसाई दोस्त हैं जो जिनके हाथ में चाकू होता है और जिनके हाथ में जो है वो टोका होता है, इस टाइम जो है वो बकरे उनको जो है ना अपनी यानी कि नजरों में उनको अपना दुश्मन मानते होंगे। भाई ये आ गया, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज ये थोड़ा सा एहतियात करवाना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों से कि कभी कभी शौकियाँ जो है वो गले पड़ जाती हैं। ऐसी खिड़कियों से अगर कोई देख रहा हो ना कि बकरा या गाय ज़िबा हो रही है तो भाई ऐसे लोगों को ना मैंने जानवरों की लातें खाते हुए देखा है। ऐसे ही है क्योंकि वो हीरोपन सारा निकलता है। भाई जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसमें ताकत का मुजाहरा नहीं किया जाता, उसमें जो है अक्ल का मुजाहरा किया जाता है कि जानवर को ज़िबा कैसे करना है। आपको पता है कि कितने बड़े हादसात हो जाते हैं और कई जाने चली जाती हैं, तो जो एक्सपर्ट बंदा होता है। और इस टाइम जो है जहाँ तक अगर बात करें जो कसाई जो है बंदा अपने बच्चों को पेट पालने के लिए पता नहीं किस किस हद तक चला जाता है, जो अनप्रोफेशनल काफी ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने चाकू और खंजर हाथ में उठाया हुआ है जानवरों को काटने के लिए, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस का होना लाजमी होता है।
1: नहीं, वो समझते हम काट लेंगे ना,
0: नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो जाता। भाई मैंने ये देखा कि एक दफा मैं अपने ही सखर के मीनारा रोड हमारे ऑफिस के नीचे ही है कि जानवर जो है वो आगे जा रहा है बंदे पीछे जा रहे हैं, मैं परेशान हो गया कि जानवर इसको लेके जा रहा है ये जानवर लेके जा। तो भाई वो जानवर जो था माशाल्लाह देखे ना खुदा की कुदरत देखे, कुछ जानवर था मैं समझता हूँ कम से कम उसका 10 मन वजन होगा, उसकी जो हाइट थी वो 6-7 फुट थी, उसकी जो लेंथ थी वो कम से कम 7 फुट का वो जानवर था लेंथ में, हाइट उसकी 6 फुट की थी। माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे जानवर हैं, और आप अपने रब की कौन कौन सी नमतों का क्या कर सकते हो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जानवर बहुत ज्यादा आया है। हम सक्कर की अगर बात करें भाई, सक्कर के अंदर जो है इस टाइम जो मार्केट है जो जानवर के हिसाब से देखी जाए, आपने कभी देखा है कि मार्केट को कभी व्यूज देखें कि मार्केट के अंदर जानवर कितना सस्ता है कितना महंगा है, मार्केट का कभी देखा है? कभी नहीं।
1: मैं मतलब गई हूँ लेकिन मतलब अबू वाले सौदा कर रहे होते हैं तो मुझे पता नहीं होता इतना कि यार ये कब गिरती है कब नहीं। कहते हैं कि लास्ट डेज में जाएंगे तो कम मिल जाएगी, स्टार्टिंग में जाएंगे तो महंगे देंगे।
0: अच्छा ये एक सोच होती है लेने वाले की भी और देने वाले की सोच होती है। मैं समझता हूँ जो पहली जो आवाज आ जाती है कानों में वो आपके लिए मुकर्रर होती है, फिर बार्गेनिंग करना, फिर इतने ऊपर नीचे। हमने तीन बकरे लिए कि तीन बकरे, एक बकरा जो है इस टाइम जो है मैं समझता हूँ कि जिनका जो वजन हो रखाई है एक बकरे का 25-30 किलो।
1: अच्छा
0: ठीक है, बकरा जो है 1 लाख से कम नहीं मिल रहा।
1: हाँ, नहीं मिल रहा,
0: नहीं मिल रहा ना। तो रात के 3 बजकर जो बंदा बेचने वाला था वो भी थक गया, जो लेने वाला था वो भी थक गया। अच्छा 3 बकरों का हो गया सौदा। तीन बकरे थोड़े से यानी कि पहला जो बकरा था मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा वो जान में भरा हुआ भी था, और उससे जो छोटा उससे दूसरे नंबर वाला बकरा उससे थोड़ा कम था, उससे तीसरे वाला उससे और थोड़ा कम था, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन थी। तो 1,70,000 में तीनों का सौदा हो गया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। हाँ,
0: बड़ा अच्छा सौदा था,
1: बहुत अच्छा सौदा है।
0: क्योंकि बकरा जो है वो उठ नहीं रहा था जमीन से, वो थक चुका था,
1: थक चुका था।
0: अभी देखे ना कि जानवर है, जानवर बंदा इंसान थक जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो गर्मी हो रही है इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है कंडीशन कैसी होती है जानवर की या इंसान की।
1: बहुत ज्यादा।
0: तो भाई बातों का सिलसिला चलता रहेगा। पहला लाइन पर कॉलर मौजूद है खुश नसीब जो सन्ना से बात करेगा, देखते हैं कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा के रहे कितने गले पे इमदाद अली दायो साहब लाड़कण मौसम की है लगे तो बर्फबारी थी
2: बहुत गर्मी आया
0: घनी गर्मी
2: आधी गर्मी
0: मुबारक ईद की गुजरे
2: शुक्र अलहमदुल्ला
0: हां
2: ठीक आ
0: सना पूछे भई जानवर केड़ो त सिवा के वा
2: अजा कोन वतो आ
0: अजा कोन वतो आ
2: जी जी न वतो आ सारा दोस्त कुछ आए न
0: केड़ा दोस्त न तमजा
2: सफलाय दायो अताला दायो
0: बियो
2: जवाब अली दायो
0: ए तमाम दायो बिरादरी के सलाम तमजो सही आ
2: وعلیکم السلام نہ کرو یاسر علی دایو
0: ٹھیک ہے وری وری مہربانی پنج فون کرو خیال رکھدا دا چلے جی اگر آپ نے ابھی بھی ریڈیو آن کیا ہوا ہے تو آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں ہمارا کالنگ نمبر ہے 03-000-11-3488 ایک کال نیٹ پر کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون کہاں سے
1: ہیلو السلام علیکم
3: ہیلو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: کیسے ہیں آپ بھائی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں
3: خیر کہہ رہے ہو تو آپ سناؤ کیسے ہو
1: بالکل ٹھیک الحمدللہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کون ہیں
0: یہ اشرف المخلوقات ہے
1: نام تو بتا دیں بھائی آپ کون بات کر رہے ہیں جناب
3: امجد علی خورخانی
0: امجد علی خورخانی صاحب پانچ ریڈیو جی آواز گھٹ کے اوپر آواز کلیئر ہی دوبارہ
1: جی
0: کادے میں رانا
1: بھائی صاحب آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں
0: پپنو اکیلے میں پپن بولو کالے اچھا بھائی کالنگ نمبر ہمارا ہے بڑا آسان سا نمبر ہے اور سنا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اس نمبر کو ریپیٹ کریں
1: بھائی آپ لوگ مجھے مجھ سے کال پہ آج بات کر سکتے ہیں سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے سب سے بڑا میری طرف سے تو گفٹ یہی ہے کہ لائیو آپ لوگ بات کر سکتے ہیں عام دنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں آج جیسا نام نے آپ سے کال پہ بات کرنی ہے تو آج کا موقع ملا ہے تو کریں نا بات اور ٹائپ کریں 03-000-11-3488 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور بنا ڈرے کہ میں نے آپ سے گوشت مانگنا ہے میں نے آپ سے نہیں مانگنا آپ مجھ سے جسٹ بات کر لیں میرے لیے یہی کافی ہے
0: ہاں جی لائن پہ کالر موجود ہیں السلام علیکم ہلو ہلو
4: وعلیکم السلام
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتنا کال کیا رانا نوید مچنا چال والا خوش ہے
1: بالکل عید مبارک آپ کو ہماری طرف سے
0: ہاں یہ بتایا گوشت گھنو کٹھو کیوں دئی ہاں یہ بتایا ہاں ہاں دشمن درد بدن جڑو چھال والا بھی خیر ہے تبھی ٹھیک ہے عید کیے بھی گزرے ہلو ٹھیک ہے ہاں عید کے موقع تے ایک سٹھو سانگ تو بدائنا سا کے ہاں رانا ہلو
1: گانا یاد کرنے چلے
0: اچھا بھائی یہاں پر چھوٹ سے کمرشل بریک کا ٹائم ہو چکا ہے اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے دوبارہ ہم آپ کے لائف کالز اپنے شو میں شامل کریں گے اور ہمارے پروگرام کا نام ہے جناب عید کی بات ہے آئی تھنک ایسے ہی ہے نا
1: عید کی بات ہے
0: اور عید کی باتوں میں جو ہے ڈھیر ساری باتیں کریں گے کچھ ہم کچھ آپ سے سنیں گے آپ کے خیالات کے اظہار آپ کے پیاروں تک ہم پہنچائیں گے اور جلدی جلدی کریں ہمارے پروگرام کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم ہو جاتا ہے پورے پورے 11:30 اور ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے
5: یار مچھا کیا کتھے ونیا گھر میں بیٹھو آئے ہاں پر ٹھیک ہی نہ ہاں شاید مجھے زندگی لائے کا دوائی نہ ہی تھئی
6: چھو بھلا چھا چھوا تکھے صاف صاف بدھا مسلو چھائے
5: یار ہک مسلو ہجے تا بدھایا مجھے تے مسلن جی قطار لگلا ہے نہ بخ صحیح لگے تھی ائی جے کچھ بھی کھاوا تھو تا ہضم ہی نہ تھو تھے پیٹ پھوک جی ونے تھو ہتھ پیر سن تھی ونن تھا ائی سجو ڈی سستی محسوس تھی تھی کہ کم جو رہندو ہی نہ آیا
6: یار تجا گھنا نہ بس ہک ہی مسلو آ
5: ہک ایو کی ہے
6: ہاں تجھو میں تو خراب آ چھا تو نہ بدھوا مادو درست تا انسان درست جے مادو صحیح نہ ہوندو تا بکھا بھی نہ لگندی نہ ہاضمو تھیندو ائی نہ طاقت ملندی
5: تا پو ماں چھا گیا
6: سولو ہلا ہے استعمال کر شفائے میدا کورس ایک قدرتی جزن ماں تیار کیل کورس تجھے جسم جو حصہ بن جی تجھے میدے کے بالکل تا
7: ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
8: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
7: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त ईद उल उज़ा मुबारक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी मोहब्बत ईसार ऐं भाईचारे जे अज़ीम पैगाम सां भरियल ईद उल उज़ा जे हिन पुरमुसरत ऐं बरकतुनि वारे मौके ते ज़वार मोहम्मद बचल शम्बाणी अब्दुल रसूल भुट्टो अयाज़ भुट्टो सुलेमान भुट्टो यामीन भुट्टो अली हसन भाबो अली गुल कटवर रज़ा मोहम्मद मस्तोई सैयद इमदाद अली शाह खान मोहम्मद महर मकसूद न्याज़ी अली मोहम्मद भुमरो ऐं अला वराए उलाशारी समेत समूरे आलम इस्लाम ऐं पाकिस्तान जी आवाम खे दिल जी गहराइयुनि सां ईद उल उज़ा जूं लख लख वाधायूं नेक तमनाऊं ऐं दुआऊं पेश कजनि थियूं पारां सोना खान मस्तोई जेक बाबात राबितो 0304-754-238 खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
9: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
7: DHMS सिंध
9: RHMP इस्लामाबाद
7: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
9: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
7: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
9: कमर दर्द
7: अरकुन निसा
9: जोड़ों का दर्द
7: हेपेटाइटिस
9: वजन की कमी या ज्यादती
7: बे औलादी
9: गंजपन का मुकम्मल इलाज
7: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
9: टाइम
7: हफ्ते से जुमेरात
9: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
7: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
9: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
7: रब्ते के लिए
9: 0326-22-00-440
7: छा तव्हां समर वेकेशन खे फ्रूटफुल बणाइण चाहियो था छा तव्हां सिर्फ़ ॿिनि महीननि में न्यू स्किल्स सिखी पंहिंजे मुस्तक़बिल खे वधीक बहितर बणाइण चाहियो था त पोइ परेशान थियण जी का ज़रूरत नाहे ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 months समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिन में शामिल आहिनि किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 year DIT कोर्स 6 months CIT कोर्स तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानीअ में जदीद ऐं आसान तरीक़नि सां प्रैक्टिकल
10: ईद उल फितर जे हिन पुरमुसरत मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबर पारां सभिनी कस्टमर्स दोस्तनि ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था
11: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
12: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
13: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
4: तो आया लाड़काणी मोहल्लो पाकिस्तानी चौक सॼो घुमियल
5: आहे
4: गानो ॿुधायो असांखे सना ॿुधे बि सना थोरी नाराज़ आहे परचाइणो
5: आहे
6: अहिड़ो
4: दर्द ऐं अहिड़ो हाल कोई बि न पुछंदो आहे ख़बर अथई
6: जानवर पुछेंगे
4: अच्छा इहो ॿुधायो सना खे ॿुधायो की जानवर तव्हां नंढो ज़िबा कयो आहे या वॾो अच्छा अच्छा इनशाला इनशाला अॻे साल इनशाला तव्हां 10,000 हलो ब्रेक ख़तम करायूं ठीक आहे पंहिंजो खोड़ सॼो ख़्यालु रखंदा रहणा कहिड़ा सोट आहिनि तव्हांजा अच्छा दोस्त ॿुधनि था कहिड़ा दोस्त आहिनि ओके अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फेसबुक पर कमेंट भी कर सकते हैं हमारा फेसबुक ऑफिशियल जो पेज है जनाब वो है GAFM88 के पेज पर आप जाएं उसको सर्च करें और लाइव आ जाएं हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं अच्छा सना मैं एक अगली बात की तरफ आ चुका हूँ ये जो ईद है एक ईद उल अज़हा ठीक है और ईद उल अज़हा के अंदर जो है तकरीबन जो है काफ़ी जो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन उनकी जो मसरूफियात है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
6: बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये बात है मतलब वो किचन में उनका दिन खत्म हो जाता है ना जिससे मीठी पे हम लोग कह रहे होते हैं गर्मी है अभी इस गर्मी में वो उनको जाना पसंद से जाएंगी वो शौक से जाएंगी उनको पता है कि हमने खाना भी है तो बनाना भी है
4: भाई
6: तो
4: इस गर्मी के मौसम में मुझे ये बताएं कि सना क्योंकि मैं ज्यादातर जो टारगेट्स करूंगा टारगेट्स नहीं बल्कि जो बातें करूंगा मर्द हजरात की करूंगा आप खवातीन को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा ये जो बकराईद के अंदर जब कुर्बानी हो रही होती है किसी भी घर की कुर्बानी है सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह पाक की कुर्बानी जो है अल्लाह पाक जो है अपनी बारगाह रिसालत में कबूल मकबूल फरमाए चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो अच्छा कुर्बानी होती है अकीदत के साथ देनी चाहिए और आजकल जो है ना हमारा जो सोशल मीडिया जो है बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है ठीक है
6: बिल्कुल ऐसे
4: कि हम अपने जो भी जानवर ले रहे हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं अच्छा मैं ये समझता हूँ जहाँ तक अगर आपका एक भाई है उसके पास घर में खाने को कुछ नहीं है दूसरा भाई बड़ा जानवर लेना है
6: जी।
4: उसके बारे में क्या ख्याल है आपका
6: नहीं मैं आपको ये बोलूं कि अगर वो ले रहे हैं ना तो या तो उसको बताकर ले कि यार तुम परेशान नहीं होना, मैं जानवर ले रहा हूँ तो हम दोनों मिलके इसको कुर्बानी करेंगे और ये आधी तुम्हारी होगी तो आधी मेरी, मतलब ये पैसे तो मायने रखते ही नहीं ना कुर्बानी के आगे। तो अगर आप उसकी दिल आजारी करते हैं, वो गरीब है मैं अमीर हूँ, तो ये भी अल्लाह ताला की राह में कबूल नहीं होती।
4: तो भाई ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और ऐसे कई बार हुआ भी है कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई भी कुर्बानी करें, अल्लाह ने अगर आपको अपने खजाने से नवाजा है तो आप अपने तमाम रिश्तों को भी साथ लेके चलें, क्योंकि हकूकुल लिबाद जो है उनको साथ लेके चलना चाहिए,
6: क्योंकि इसकी माफी नहीं है ना। तो
4: अल्लाह अपनी तमाम चीजों को माफ कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हैं हकूकुल लिबाद है उसको
6: माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की माफी कहते हैं इंसान ही देता है, अल्लाह ताला तो बहुत दूर की बात है, बहुत अहम जाके तो अल्लाह ताला का हिसाब आता है ना। आप पहले बंदे से तो माफी ले लें अपने।
4: तो भाई बिल्कुल प्यारा दोस्तों, हाने की मुद्दे वाली गाल क्यों था सना के भी सिंधी समझ नहीं है। सना जो चवण जो मकसद यो है कि जानवर जो तंजिबा कयो आ वो जानवर चार जंगन वालो आए, ये दो टांगों वाला है भाई, मुर्गा तो नहीं है कहीं। तो भाई आप हमें ये बता सकते हैं कि जानवर जो है वो गाय का है, आपने बैल जिबा किया है, बकरा जिबा किया है, अच्छा
6: नहीं छुपाया तो ऐसे है जैसे हम इनसे लेके आ जाएंगे अपने पास।
4: ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, भाई सना देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर इतनी कॉलें आ चुकी है, हमने मुख्तसर कॉल्स ली है कि लिसनर जो है ना हमारे वो मजबूर हो जाएंगे, अभी वो कॉल करेंगे भाई सना आप ये बताएं कि हमने गोश्त पहुंचाना है कहाँ पर है, ठीक है ना। तो भाई ये लिसनर के साथ मुकाबला भी है हमारा, तो बल्कि जितने भी हमारे प्यारे लिसनर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा कॉलिंग नंबर जो है बड़ा आसान सा नंबर है, सना उसको रिपीट कीजिएगा।
6: जी जी आप हमें कॉल कर सकते हैं, टाइप करें 03-000-11-34-88, मैं रिपीट कर रही हूँ 03-000-11-34-88 पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करने का मौका एक दफा दोबारा हासिल कर सकते हैं भाई, क्योंकि हर वीकेंड पे तो आपसे मेरी कॉल पे बात हो नहीं सकती या होती नहीं है, तो फिर इसलिए आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं।
4: तो भाई जल्दी जल्दी करें कॉल मिलाएं, और यहाँ पर 11:44 हो चुके हैं, मुझे लगता ये है कि फिर से छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम होने वाला है, और कमर्शियल छोड़ यानी कि 3 कमर्शियल है, उसके बाद हम आपके लाइव कॉल अपने शो में शामिल करेंगे। जाना नहीं, हम यूं गए और यूं वापिस आए।
7: थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है, पेश है शरबत रूह राहत, कुदरती जड़ी बूटी मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी सुकून आई हकीकी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाजन रखन, गर्मी के असर के घटाएं आई जिस्म के तवाने शरबत रूह राहत रोजाना सिर्फ एक गिलास। शरबत रूहे राहत मिलन जो हंध मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सी तांगे सलामत रखे।
1: वफा
0: अब्दुल जतोई अब्दुल वहीद
1: साईं वफा वफा अब्दुल वहीद जतोई हूं ता जो कल वफा कानी हर को जल्दी बुडा था।
0: हां हां
1: पर तो भी असा वफा 88 सा कया।
0: वाह बिल्कुल बिल्कुल, तमा मखे ये लगे तो माशाल्लाह तमा बुजुर्ग थी मिदो ता जा बटरी या बटरी रंद क्रीप मदा पो भी ता सा प्रोग्राम होतो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बनायो बादशाह नंढड़ी बेटी भी तारे गड वेठी आई ॾिसां थो मां बेकड़ीअ खे बि भलीकार चवंदा वे
0: कंहिंखे
1: बेकड़ी नंढड़ी जेको अगाड़ ॻाल्हाए पई।
0: अच्छा अच्छा अदड़ी अदड़ी अदड़ी
1: अदड़ी जा बेटी जा भाजी
0: अदी बेटी भाजी इतना बड़ा लकब दे रहे हो आपको।
1: बेटी तव्हांखे भलीकार
0: बेटी कहिड़े बेटी आपको भलीकार। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे इसको सना?
2: मैं क्या बोलना चाहूंगी, आप लोगों ने सारी हिंदी में बात की और मुझे बहुत ज्यादा
0: वो कहना चाह रहे हैं कि अदी भी कह रहे हैं आपको, बेटी भी कह रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं।
2: तो अदी और बहन एक ही तो बात है ना?
0: हाँ अभी बेटी भी एक ही बात है
2: जी।
1: सुनिए शहबाज शाह है या अदरी सही बोली न थी समझे
0: उर्दू में गला जुड़ा है
1: उर्दू जरा सा का थे गा रहे ना वहां ता या सिंधी पे वर बलायो ता के भाषा बाद में अदरी बेटी के ईद मुबारक हो जनी
0: खैर मुबारक। अच्छा यो वही ये बतायो के तमाम जानवर केड़ो जिबा कयो है
1: यार? असल में गाल कै मां खुली अन्या सा जिबा न कयो भाई तैयार में आयो एकड़ो ढोर हुंदा मिसाल मावट हुंदो भांगा खड़बान वे ढोर में सत
0: जी जी जी
1: उन्हें तैयारी में आए हों तो भांग खड़ो बाकी हाल फिलहाल जिबा न कर
0: हलो ठीक है अल्लाह से तवानी भी कबूल फरमाए तो गोश्त थोड़ो हल्को खाए जो पेट पांजो अक्सर मानू वधी खाइंदा ने पो वरी हॉस्पिटल
1: में सच पुछो ता मैं एकड़ी ता जे चैनल थोड़ो एकड़ी मारो केश कन हां जे कबूल पे
0: जी जी
1: ता गोश्त जे को आए कुरान में लिखत हर शय उजे जे हिसाब दा हले मानू ओड़े पाड़े के दे पर गरीब ब्यान उन के दे ई न त पांजी फ्रिज भरे रखन ई न कन खते पर हे त हल उदय खे छॾ पर हूअं बि वॾा नंढा ॾींहं थींदा आहिनि गोश्त तयारु थींदा त पाड़े में गरीब बि खोड़ हूंदा
0: आहिनि
1: सार लाइ ते
0: हाय मुंहिंजो यार मुश्की भूरन खां मां बस कई।
1: हा
0: गानो
1: बाक़ी नंढड़ो वारो त असांखे अॼु तव्हांखे ईद मुबारक आहे तव्हांजे ॿुधंदड़नि खे ऐं जेके तव्हांजे 88 सां हिकिड़ा जुड़ियल आहिनि जी बाबर शेख साहब आहे जी बाजी सुमिरा ताणी हले आयल कान हिकिड़ी वरी ॿी बेटी रुखसार खे खोड़ सारा सलाम भाषा बाद तव्हां खोड़ सारा सलाम आहे हिकिड़ो वरी जलाल जो कलाम अथव
0: जी जी जी
1: त हिन ईद ते हो अचणो प्यारो पिरी न वायो न की सुरमी ज़री पाती न की नेरो लटो लाथो हिन ईद ते हो अचणो आख़िर में तव्हां हाणे 11-12 था जॾहिं विच में जेको ॿुधाईंदो त मां त झूमंदुमि नचंदुमि
0: तव्हां हाणे नचो साल जो गर्मी ॾाढी अथव मतां तव्हां नचंदे नचंदे वञो
1: मां सां कुझु भार पिया आहिनि। हा मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतो मुंहिंजो भाचो आया में जतो हिकिड़ो छोकिरो आहे ॻाल्हायो आस बचा चढ़ लारकाणे खां
0: ठीकु आहे वॾी वॾी महिरबानी
1: थोरा सारा सलाम भाई जेके ॿुधनि था
0: वफ़ा अब्दुल
1: जते पारो सॼे सत खे सलाम।
0: अच्छा जी ये काफ़ी हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त है जो कि सराउंडिंग एरिया का जो असंगे बुधन पे जो असाजा कच्छी का दोस्त बुधन पे सराउंडिंग एरियाज का बुधन पे उन्हें भी ईद जो लख लख वधाई होजन। अच्छा भाई बात करते हैं। अच्छा सना मैं सिंधी में भी बात करूंगा आप उर्दू में बात कीजिएगा। कुर्बानी का जो गोश्त होता है और अनलिमिट खाने से भी आपको पता है कि कितने नुकसान हो जाते हैं अक्सर जब आप प्लेट भर लेते हैं। अक्सर आपको पता है कि खुदा ना खासा जब आप अनलिमिट खाते हैं उससे काफी सारा आपकी जिस्मानियत को आपके पेट को नुकसान पहुंच सकता है।
2: क्योंकि ये हम लोग खाते हैं एक शिफा होती है इसके अंदर लेकिन अगर हम इसको अनलिमिटेड खा लें तो कोई भी चीज अगर आप ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो तो नुकसान का बाइस बन जाती है ना। तो लोग समझ रहे होते हैं हमें दोबारा नहीं मिलेगा बस खाते जाओ तो ऐसा नहीं है। इस गोश्त को भी कहते हैं कि आप 2-3 दिन आप इसको खाएं इसके अलावा आप इसको रखें भी ना अपने पास। लेकिन लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे पूरी पूरी गायें काटने के बाद फ्रिज भर लेते हैं तो ये चीज गलत है ना। आपने क्या करना है पहला ऐसा अपना निकालना है दूसरा रिलेटिव का निकालना है तीसरा उसका निकालना जिसको ये चीज जिस पर है कि भाई उसको चाहिए उसको मिले जो पूरा साल इंतजार कर रहा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये लोग क्या करते हैं अपना अपना फ्रिज भर लेते हैं और जब ये लोग बनवा रहे होते हैं आपने देखा है आजकल का जो रिवाज है होटल्स में जो है, अभी कहते हैं कि होटल हमारा बंद है जी, यहाँ पर अभी आपको क्या चलेगा कि जो आपने अगर अपना गोश्त लाकर दिया है तो आपने वो ऑर्डर चल रहे होते हैं, तो ये कितना गलत है। देखिए उनकी रोजी तो वो चला रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो क्या करे। आपने गायें काटी, आपने फ्रिज में रख ली, तो ये कुर्बानी तो नहीं हुई। कुर्बानी तो वो होती है जो आपने अल्लाह के राह में पेश किया और आपने उसको लोगों तक बांट दिया, आपने रखी ली अपने लिए, तो ये कौन सी कुर्बानी हुई भाई। तो आप पूरा साल खाते हैं और बकरीद का गोश्त तो रखना भी नहीं चाहिए, एक हफ्ते के बाद इसमें टेस्ट लेस हो जाता है वैसे भी। अगर आप देखें जी कुर्बानी का गोश्त, ये बिल्कुल जायका नहीं छोड़ देता है बिल्कुल एक हफ्ते बाद ना, तो आपने इसको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करना होता है और सबको दे देना होता है।
0: अच्छा, एक जबरदस्त ट्रैक मैंने यहाँ पर प्ले किया है और ये स्पेशली डेडिकेट करते हैं उनको जो की जिद्दी होते हैं, हथ मथे क्या से डर हुआ। तो भाई जल्दी जल्दी कर प्रोग्राम को लाइक।
2: इसका मतलब आपके पास कोई जिद्दी लोग मौजूद हैं?
0: हाँ, जिद्दी लोग मौजूद हैं भाई, एक तो मेरे बराबर में बैठे हैं।
2: ओहो,
0: इनको भी डेडिकेट करते हैं।
2: सही है।

0: जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का नाम है ईद की बात है। और सना मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि ईद की बातें में जो है हमने काफी सारी बातें भी की हैं, दोस्तों को समझा भी रहे हैं कि भाई कुर्बानी का जानवर जो है छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जिस मकसद के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं वो कुर्बानी का गोश्त जो है उन मुस्तहक लोगों तक जाना चाहिए जो कि पूरा साल
1: इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी ये कहती हूँ कि ये गोश्त तो होता है उनके लिए जो पूरा साल इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे हमारी मैट्स हो गई या कोई बराबर वाले पड़ोसी हो गए, तो उनके लिए ये हकदार हैं। वो पहले एक आप हिस्सा अपने लिए जरूर निकालें, उसके बाद आप पहले उनको दें। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो रिवाज उल्टा हो गया, सारे के सारे जो है ना लोग अपने पास सेव स्टॉक करके रख लेते हैं, जैसे पूरा साल यही नहीं खा पाते भैंस का गोश्त, तो ये उल्टा हिसाब हो गया हमारे पास। तो ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी सैक्रिफाइस का नाम है।
0: कुर्बानी उस चीज का नाम है कि जो आप मुस्तहिक लोगों की मदद भी करें, लोगों को भी दें जो।
1: और ये सिर्फ कुर्बानी की एक दिन नहीं होती, ये आप पूरा साल अगर आप इस तरीके से चलें तो आपकी रोज कुर्बानी कबूल हो,
0: रोज कुर्बानी कबूल
1: ऐसे ही है।
0: हद मथे क्या सी डाडो,
1: इनके पास बहुत सारे

0: सखर के हो
1: तो आवाज भी।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
0: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद

0: जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-569।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
7: Awesome. Summer.

ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जे प्रोपराइटर गुलाम नबी

0: तो वहाँ पर जो है आपने अपने स्पीड को कंट्रोल में करना होता है। जब आप अनलिमिट गाड़ी चलाते हैं तो खुदा ना ख्वास्ता बहुत ज्यादा हादसा हो जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो भाई अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। वैसे एक चीज मैं यहाँ पर नोट करवाना चाहूंगा कि अभी देखें जैसे कुर्बानी है और हर गली में हर जगह से जो है कुर्बानी की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ब्लड भी होगा, पानी भी होगा, तो रोडों पर काफी सारा हर जगह पर पानी भी खड़ा होता है, तो ब्लड भी होता है। तो हर बंदा जो है जो पैदल भी कुछ लोग जा रहे होते हैं, कुछ गाड़ी में जा रहे होते हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश सना यही रहती है कि मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार जो रोड पे चलने वाले लोग होते हैं वो भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं। तो जब आप फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जब वो पानी खड़ा होता है तो आपको पता है वो छींटे कहाँ तक जाते हैं?
1: बिल्कुल, किसी के कपड़ों पर आ जाती हैं, कभी कुछ किसी ने व्हाइट ड्रेस पहना और बुलेट लग जाए तो ये अच्छी बात नहीं है ना, किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं या गंदा पानी भी लग रहा है।
0: तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है और खासतौर जो है आपने कुर्बानी के करते वक्त आपने काफी चीजें नोट करनी होती हैं। आपको पता है कि हमारे जो शक्कर के अंदर जो है कुछ रोड रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम बड़ा
1: बिल्कुल
0: अच्छा नहीं है ना, तो वहाँ पर आपने अपनी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने जो है जो कुर्बानी जो का जानवर जो उसका कुछ ऐसा जो जब जानवर की सफाई हो रही होती है, जब कटाई हो रही होती है, तो जब बिल्कुल जानवर साफ किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप गली में रख देते हैं, उसकी स्मेल जो है आपको पता है पूरी गली में फैल रही होती है।
1: सुबह उसने हमारे दरवाजे के आगे वो सारा कचरा उसका ना फैला के चले गए। अब मैं कह रही हूँ ये हमारे घर के सामने क्यों डाला, हमने तो नहीं की थी कुर्बानी आज, तो फिर क्यों हमारे घर के सामने डाला? और वो सारे बच्चे हमारे घर के आगे खड़े हो रहे हैं। मैंने अभी FM आ रही थी यहाँ पर, मैंने कहा मैंने ऑफिस जाना है, मुझे रास्ता नहीं दे रहे बाजी, मुझे देके जाएं, बाजी मुझे देके जाएं। मैंने कहा भाई ये हमारे घर की नहीं है, अब उनको कौन समझाए।
0: ऑलरेडी
1: उन बच्चों ने
0: हाला, तो भाई इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें कि आप अपना जो कटे हुआ जानवर का जो कचरा होता है तो वो अपने घर के आगे ही रखें, या उसको आप उस जगह लेके जाए जहाँ पर एक जगह मुकर्रर की जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि आपने कचरा कहाँ फेंकना होता है। तो भाई इसकी वजह से भी काफी जो रंजिशें होती है, रंजिशें होती हैं और माहौल में शोर शराबा शुरू हो जाता है।
1: यहाँ पर आने की जगह नहीं दे रहे थे वो बच्चे, कहते नहीं बाजी हमें देके जाएं।
0: भाई सना ने जो है मैं बताने लगा हूँ 12:14 हो चुके, सना ने 4 बकरे 3 बैल 4 ऊंट और 25 जो है मुर्गियाँ जो है आज के दिन सेवा किए हैं
1: मेरे खुद।
0: हाँ तो भाई इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें भाई, अपने अपने ख्याल रखें और खासतौर जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, जहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है, तो फिर वहाँ पर जो है रोड गाड़ी पे जब आप रिक्शे में हैं, फोर व्हील गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल में हैं, तो आप क्रॉसिंग जो है बड़े मोहतात होकर किया करें।
1: ऐसा नहीं ना वहाँ से कुर्बानी करके आ रहे हो यहाँ पर किसी का दिल दुखा दें, वो कुर्बानी ऐसे ना करिएगा प्लीज।
0: तो भाई इस चीज का बहुत ज्यादा अपने ख्याल रखना है। तो काफी प्यारे प्यारे दोस्त हमें कॉल भी सना करें, क्या ख्याल है, कॉल लीजिए एक
1: जी, कॉल लेते हैं ना,
0: चले भाई कॉल पे देखते कौन। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, अदा कह रहे कितने गले पर आना जी, केड़ा हाल है, ठीक है, कितने कॉल कह रहे ना, माशाल्लाह मीरपुर खास का वहाँ कॉल किया है। मीरपुर खास वाला सब ठीक है, खुश हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह। जाम मुबारक हो
0: अच्छा
2: जी,
0: मुझे दोस्तन जी मिल्कियत हूँ जी, ॿुधायो कहिड़ा दोस्त आहिनि मुंहिंजा, जी जी
2: हा त अहमदानी घाट जे अंदरि मोहम्मद ज़ोर आहे, मोहम्मद सुल्तान जो पुट अहमदानी, मोहम्मद फारूक गुलाम फारूक नालो मुंहिंजो मामू आहिनि, हिननि सभिनीनि खे मतिलबु आल टू आल डुमबाल वारनि खे मञी तक डुमबाल खे ऐं इनशा शिया कंदासीं माना जीअं
0: सलामत रखे पंहिंजो खोड़ सो ख्याल रखंदा, थैंक यू। अच्छा जी कुछ कमेंट और कुछ मैसेजेस अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें, सना क्या ख्याल है, और देखते हैं कौन दोस्त कहाँ से है, क्योंकि हमने मैसेज भी शामिल कर रहे हैं और भाई मैसेज सबसे पहले मैसेज करने वाली है रोजीना और सखर से कहती है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक आप हैं। सना मेरा गोश्त घर पे रेडी है और एड्रेस बताएं कहाँ पहुँचाना है। हाँ जी सना,
1: तो सही हम ये आरजे शिबास का एड्रेस बता देते हैं।
0: अच्छा जी, ओल्ड सखर हाशमी इमाम बारगा, वहाँ पर कार पार्किंग होती तो वहाँ पर आप 8 बजे आ जाइएगा, तो जब गाड़ी पार्क हो रही होगी तो वहाँ पर आपने गोश्त पहुँचा देना भाई। तो भाई एक कॉलर पे कॉलर मौजूद है, लड़काना वाले कहाँ चलेंगे भाई? लड़काना की भी बात करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई भाई। अच्छा सना मुझे ये बताएं, अभी हम बात करते हैं कुछ सिटी के हवाले से, इस टाइम लड़काना बहुत अच्छा है और लड़काना के जो वहाँ पर ऑडियंस है मोहब्बत करने वाले हैं,
1: प्यार
0: करने
1: वाले हैं।
0: और आप लड़काना गई हैं कभी?
1: लड़काना बस एक दफा गए थे हम लोग, आप लोगों के साथ हमारा ट्रिप था ना?
0: नहीं मैं,
1: आप नहीं थे। जी जी बिल्कुल, आप
0: अपनी टीम के साथ कभी भी हम लड़काना नहीं गए, हम वैसे लड़काना गए हैं।
1: अच्छा अच्छा, जी जी
0: अच्छा। लड़का हमारी टीम बहुत अच्छी है लड़काना की, और लड़काना वैसे बहुत अच्छा है। लड़काना के अंदर काफ़ी हमारे इवेंट्स भी हो चुके हैं, वहाँ के जो ऑडियंस की जहाँ तक बात करें, क्योंकि लड़काना के जो जितने भी ब्यूटिशंस हैं, जहाँ हमारी फॉलोअर्स की जो क्लासें हो रही होती हैं, उसके अंदर बड़ी एक्टिविटीज़, बड़ा मज़ा हो रहा होता है। तो वहाँ की जो टेक्नीशियन हैं, जो ब्यूटिशंस हैं, बड़ी एक्सपर्ट हैं। लड़काना जो है ट्रेनिंग में जा रहा है फैशन की दुनिया में।
1: तो हमें तो लड़काना वाले याद ही नहीं कर रहे होते भाई, क्या हमारे
0: भाई? मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप लड़काना के किसी भी इवेंट्स में हमारे साथ चलेंगे तो आप नहीं, आप ये आप सोचेंगे कि यार ये लड़काना सिटी है, हम लड़काना भी मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल,
1: तो मुझे तो याद ही नहीं करता कोई भी।
0: क्या और लड़काना के अंदर जो है माशाल्लाह काफी अच्छी ऑडियंस जो है, जितने भी ऑडियंस है लड़काना के, जितने भी खवातीन हैं, या लड़काना में जो ट्रेडिंग इस समय चल रही है, यानी कि जो ब्यूटिशियंस की जो अपनी कैरिंग चल रही है, ड्रेसिंग के हिसाब से देखें, अगर ब्यूटी के हिसाब से देखें, तो काफी एक्सपर्ट है वहाँ पर।
1: अच्छा ये चीज मैंने नहीं देखी, मैं तो सिर्फ एक दो जगह पे ही गई थी, तो बस इसलिए लड़काना में विजिट करके आई थी।
0: भाई लड़काना से जितने भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, तो लड़काना वाले लड़काना को हाईलाइट करें, और लड़काना वाले भी हमें कॉल कर सकते हैं, सकरण वाले कॉल कर सकते हैं,
1: और दावत भी दे सकते हैं बुलाने की।
0: हाँ जी,
1: हमें बुलाने की दावत भी दे सकते हैं, हमने नहीं
0: दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं। ईद का पहला दिन जो है सना, देख लें आप भी माशाल्लाह अभी मैच्योर हैं, पहले दिन कुर्बानी भी बंदा बिजी होता है, दूसरे दिन मेहमान नवाजी में, तीसरे दिन घूमने फिरने में,
1: तो हमें भी
0: तो मेहमान नवाजी के लिए कल हो सकते हैं, आपको बुलवा लें।
1: अच्छा
0: ठीक है ना,
1: एक दिन पहले पड़ता है ना
0: भाई, एक दिन पहले पड़ते हैं। हाँ भाई, तो पहली दावा देखते हैं कहाँ से आपको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, चाल वाला साईं
0: हरदम तमा जो ख्याल है राणा, कह रहे कि थाने कॉल किया
2: सर, मैं तो रेस्टोरेंट का खाऊं यार, से नंबर सीआर में था सा मुलाकात थी सर, फेम थे आज से हो यार प्रोग्राम सर, हरियाणा गर्मी में सर, इतने अरसे का पोता आ गया था, कल क्यों ना फिर तो भी था सा के दिल जलाया सर, ऐसा
0: नन्ना मत दिल जलाने वाला मानू ही ना यार राणा, हिकड़ी गाल त ते आहे के नंबर हिकड़ो आ कॉलिंग करण वारा हजारे माण्हू आहिनि त पोइ नंबर त बिज़ी मिलंदो, नंबर वन। नंबर टू गाल इहा ई आहे त असां सभिनि खे कॉल्स खणंदा आहियूं, जंहिंजी कॉल ईंदी आहे असां इहो नयों ॾिसंदा, हीउ कॉल करण वारो दोस्त केरु आहे, असांखे इहा ख़बर हूंदी आहे की कॉल अचे पई, असां अटेंड कयूं।
2: बिल्कुलु
0: मज़ो ख़राब थी वेंदो आहे, खुश हुजो पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजे बचड़नि सां गॾु, त छा चवणु चाहींदा लास्ट में? वालेकुम सलाम राणा, दिल में रखजो, ठीकु आहे, ख़ुशि रहो, हाणे खिली ॾेखार त ख़र्ची ॾियई। ओके वाह वाह, ये खिलंदो रहो भाई। हमारे जितने भी लिसनर हैं जो हमें कॉल कर रहे होते हैं, तो हम कॉल मुख्तसर सी ले रहे होते हैं, काफी सारी बातें भी करनी पड़ती हैं, और जितने भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा लाइन पे एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: जन्नत अल मकाम तज़ुकुल हराम खाने को मिले आपको पछतावा और बादाम, राणा एडी स्पीड में कह रही
3: सबसे पहले आपको एक हमदार के हैं सर
1: गाय पीछे
0: माशाल्लाह ये बताया कि पोया छाला को दिक्कत हो ढोर आता है पोया गाँव पोया
3: कोई भी ना अकेले बिठो
0: है अकेले बिठो बाहर बिठो अंदर बिठो दरवाजे ते बिठो राणा टेम्परेचर ॾिसो मथे 50 सेंटीग्रेड खां मथे थो वञे गर्मी नथी लॻे तव्हांखे
3: न न गर्मी
0: हेवा कहिड़ी मखलो का जिन आया अच्छा माशाल्लाह कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो ईद कीअं बि गुज़रे अच्छा सना नाराज़ बीठी आहे जंहिंजी गोश्त जी कंहिं दावत न ॾिनी
3: आहे
0: जी नाराज़ इन करे आहे की तव्हां कहिड़ो जानवर ज़िबा कयो आहे
1: कोई बि न
0: वाह वाह हिकिड़ो गानो थो ॿुधाए राणा
3: कहिड़ो गानो
0: सोनो कोई सुठो गानो ॿुधाए जीअं तूं जीअं पाण सोनो आहीं वाह जी वाह माशाल्लाह असीं तव्हांखे सलामत रखे ख्याल रखंदा जानी خیر مبارک ہوں اوکے اچھا بھائی جلدی جلدی پروگرام کو لائک اینڈ شیئر کریں

0: अच्छा जी सना, आपको पता है कि इस टाइम हमारे इवेंट हमारे प्रोग्राम में सबसे पहली जो आर्टिस्ट की बात करें तो फिल संजरानी, जो कि पाकिस्तान का बहुत प्यारा नाम, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम या अली मदद।
0: मौला अली मदद। तो फिल भाई के डालन ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है, जो पेरे उठाओ तो मांगे खूब सारी मुबारक हूं।
1: आज शहबाज बुखारी के उन संगठन सही सच्चे सही संगत के आज जितनी टीम के पहले वतन आलमी इस्लाम के सिंधी दुनिया के मुसलमान के जेके इन वक्त रेडियो दाज था दिन बैन के तुफान खान संजरानी के तरफा
2: कैसे हैं आप? तो फैल संजरानी सर कैसे हैं आप? और ये बताएं, अब वैसे मुझे अब लग रही है कि ईद हो रही है क्योंकि आपसे बात हो गई है हमारी, तो ये बताएं कैसी गुजर रही है ईद आपकी?
1: आज बिल्कुल ईद है, ईद कुर्बान है जी, कुर्बानी भी कर रहे हैं।
2: आपने क्या की कुर्बानी, मुझे ये तो बताएं आप, तो आप तो कम अज कम बता दें जी।
1: आप लोगों ने कोई कुर्बानी की है या शहबाज भाई कुर्बान हो रहे?
2: अरे ऐसे ऐसे ही समझे अभी तो कुछ। आप बताएं कि आपने क्या कुर्बानी की?
1: जी हमने कुर्बानी की है अल्लाह की राह में, अपनी जुबान की कुर्बानी की है, निगाह की कुर्बानी की है।
2: तो बस हमें अपना मेहमान या आप हमारे मेहमान कब बन रही है बताएं
1: जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द।
2: अच्छा तो आप हमारे मेहमान बनेंगे, हमें बनाएंगे अपना मेहमान, ये बताएं।
1: नहीं, हम दोनों तरफ दरवाजे खुले हैं ना।
2: अच्छा जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जबरदस्त सॉन्ग थी।

0: शहनशाही, बस तेरी शहनशाही, मैं न कर मरण ताई, मुर्शिद ताई बुखारी मुर्शिद ताई।
1: वाह वाह वाह वाह, अल्लाह सीता की सलामत रखे। तो फैल भाई आबाद शाद जो खोर सारों तो अल्लाह दुआओं में मौला सीता के आबाद रखे। ठीक है, ओके, लव यू। अच्छा भी ये थे हमारे साथ कॉल पर तुफेल कर सजनानी, मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड दोस्त हैं और तकरीबन हम इवेंट्स में साथ होते हैं, प्रोग्राम्स में। अगले कौन हो सकते हैं लाइव कॉल पर हमारे साथ, बताएं आप।
2: देखते हैं कौन है वो बंदा।
1: अच्छा जी, मैं तो कॉल सबको मिला रहा हूँ, अगर कोई बीजी हुआ तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बैक कॉल जरूर आएगी। ठीक है जी,
2: अगला
1: हो सकते हैं मैं असगर खोसो को भी लाइन पे ले लें, उससे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो भाई जल्दी करें, प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें, पूरा नेटवर्क हमारे साथ इस टाइम कनेक्ट है ईद की बातों में, ईद की बातों में। और पहले हमारे साथ जो सिंध के पाकिस्तान बल्कि मैं वर्ल्ड के नंबर वन आर्टिस्ट कहूंगा, स्टेज के बादशाह है सुफेल सजनानी, और अगला कॉलर देखते हैं कौन हो सकता है।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इस टाइम पाकिस्तान सिंध का हमारा बहुत अच्छा नाम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अजगर अपना अजगर खोसो से भी आपने देखा होगा, वो भी लाइन पर मौजूद थे। और अपना तुफैर खान सजनानी, पाकिस्तान का सिंध का हमारा बहुत प्यारा नाम, आसिफ पहाड़ उर्फ गामो। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
0: आसिफ भाई चाल वाला खुश आयो तबे ठीक है?
1: जी जी शुक्र आता खैर खैरियत।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। ईद जो पेन डाड़ तमा के खोड सारी ईद जी मुबारक हो जन।
1: मेहरबानी खैर मुबारक ता के भी ईद मुबारक जेके मुजो आवाज दिसन ता बुदन ता सबनी मुसलमानन के असा ईद लुजा जो खोड सारी मुबारक हो जन।
0: अच्छा गामू भाई इन टाइम पूरी सिंध संगे बुदे भी पूरो हैदराबाद का वठी करे पूरी सिंध संगे बुदे भी बल्कि लड़कानो भी कनेक्ट है शिकारपुर कंदकोट जिकाबाद कश्मीर छा मैसेज देन चाहिदो ईद लुजा के हवाले सा तवा
1: मैसेज यो दीदो तो सबनी के गोश्त जो बबो बूटू में जो चार चार पजो बूटू विच वधिक जो हडा घटो जन छिछड़ा घटो जन घर जा भाती जी खाएन उसई कई तो एडो सारो जको 50,000 80,000 जो जानवर वतो तो बबूटू असा के मेहरबानी कर पाखन गोश्त हो जे सबनी के बबो बूटू न जो अल्लाह के मनो यो भाई चिचड़ा अडा पाजे ला रखो गरीब जो हक उनन के मिले और कबे के गोश्त जो कबे के मोहब्बत जो कबे सा प्यार कयो दिल में नफरत खत्म कयो।
0: वाह वाह बिल्कुल। आरजे सना इन जमो संगत बैठी है। आरजे सना तवा जी वाली प्रस्तार है माशाल्लाह तवा जी टिकटॉक वगैरह दिसदी रंदी आ। आरजे सना
2: जी जी बिल्कुल बताएं आप कैसे हैं और ये बताइए कि आपने कुर्बानी में क्या किया। अभी तो चलें ठीक है एक्सपेंस तो बढ़ गए हैं हर चीज के लेकिन कुर्बानी तो करनी होती है ना।
1: जी जी
0: आज सना दीदी मुझे लाए गोश्त आए ना है
1: गोश्त आए बिल्कुल गोश्त आए
2: जी जी
1: गोश्त जी लाए एड्रेस बताओ टीसीएस करे मोकलिया तो पर इधर ट्रेडियो टीसीएस ऑफिस ही मोकलियो बंद है।
2: ओ दो तीन दिन बाद आई
1: एम सॉरी बेबी
2: ऐसे तो ना करें ऐसे तो ना करें। okay. शिवाज भाई तो अभी सीट जो है ना सारे बैग लेके बैठे हुए कि वो अभी गोश आए वो लेके जाएं तो वो नाम मेरा यूज करें लेकिन उन्होंने जाना है अभी क्या करें इनका प्रोग्राम।
1: बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा ईद के बाद आपको जरूर मैं आपको देसी मुर्गी खिलाऊंगा।
2: नहीं तो बड़े ईद के बाद आपने क्या करना दूसरा जानवर काटना पड़ेगा ना।
0: वरी वरी मेहरबानी आसिफ भाई तमा डाडो जबरदस्त पैगाम दिनो आहे
1: और बस आई
0: अल्लाह से अल्लाह से कुछ ओके। अच्छा भी ये थे हमारे साथ सिंध के बड़े प्यारे हमारे दोस्त आसिफ पहाड़ उर्फ गामो। गामो मेरे साथ लैंड में मौजूद थे और यहाँ पर छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका है और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। सुनते रहे सिंध की आवाज प्रोग्राम ईद की बातें।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ईदुल उज़ा जे पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जे प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफा पांजन समूरन कस्टमर्स दोस्तन ऐं अज़ीज़न वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां मुबारकबाद पेश कजे थी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
0: ईद उल फितर के इन पुरमुसरत मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबर पारा सभिनी कस्टमर्स दोस्तन ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9186-51।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम बैक वंस अगेन, और एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। जैसा कि दो घंटे हमारे पता ही नहीं चलते, और अभी भी दो घंटे ऐसे खत्म हो गए हैं जैसे हमारे थे ही नहीं। तो अभी ये बताइए कि यार अब तो पूरे दो घंटे हो गए हैं और आप लोगों ने तो ऐसे डर के भाग गए जैसे हम लोगों ने, हमने आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यार ईद उल अज़हा है क्या, तो ईद उल अज़हा के मैं मायने भी आपको बताती चलूं कि ईद उल अज़हा को कुर्बानी की ईद यानी बकरा ईद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। ईद उल अज़हा ज़ुलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये ईद हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल की सुन्नत को ताज़ा रखने के लिए मनाई जाती है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। ईद की नमाज के बाद साहिब अस्तात लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह की राह में गाय, बैल, ऊंट, बकरी की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा गरीब और मिस्कीनों के लिए होता है। ईद उल अज़हा मोहब्बत, भाईचारे और एसारो कुर्बानी का दर्ज देती है। लेकिन हम लोग तो उसको एक शौक बना लिया हमने कि यार हमने जो है ना इसको शोशा करनी है, जानवर को लेके घुमा रहे हैं, लाइटिंग्स में खड़ा करें, ये चीज नहीं है। कुर्बानी एक सेक्रीफाइस का नाम है। आपने कुर्बानी हर चीज से देनी होती है, नियत की कुर्बानी देनी होती है, आपने लोगों की दिल आजारी से रोकने की कुर्बानी देनी होती है। तो ये चीजें कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी अगर आप करते हैं तो जरूर कबूल होती है। हाँ, तो आप दूसरों के लिए भी ईद वगैरह रखा करें और ईद को अच्छा से गुजारा करें। और मुझे बताया तो है नहीं, तो जी जाइए अकेले अकेले एंजॉय करिए, कलेजी खाइए, पाए खाइए, और हमें तो बिल्कुल ना बताइए क्योंकि हमने तो देना है ही नहीं। तो ऐसे ही है ना आज शहबाज, आप मुझे बताएं।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि बाजुकात हम अपने लिसनर्स को मायार तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको इतनी एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है यानी कि अगर किसी ने भी कोई कुर्बानी की है, अच्छा देखिए जो ये सना जो तल्ख हकीकत है, इस टाइम जो महंगाई चल रही है, महंगाई ने सबके घुटने जो वो टेक दिए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इस महंगाई में भी तकरीबन ये आफरीन है कि मार्केट के अंदर जो है जानवर काफी सारा जो है वो बिका भी है
0: जी।
1: और सेल आउट भी हुआ है, लोगों ने लिया भी है। अच्छा, कुछ लोगों की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है कि जब बंदा आपने कुर्बानी करनी है तो आपने पूरे साल का ना एक बजट बनाया हुआ कि इस साल मैंने कुर्बानी करनी है, उसके लिए आपने कमेटी डाली हुई है या उसके लिए आपने जो है अपना एक प्लान किया हुआ है। देखो कोई भी काम होता है ना, प्लान को सक्सेस करने के लिए तो आपने उसके लिए बेहतर एक प्लानिंग करनी होती है। जब आपकी नीयतें साफ होती है मंजिलें आसानी हो जाती है। तो इस टाइम कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा, मुझसे मिलते भी हैं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इस टाइम तकरीबन जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स वाले दोस्त हैं या अदर जितने भी मार्केट्स के दोस्त हैं, हम जिस यानी कि इस टाइम दौर में चल रहे हैं, ये बिल्कुल महंगाई का दौर है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी फैमिलीज को दे रहे हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, अखराजात हैं, किराए का घर है, फिर भी अल्लाह की राह में जो है आप हिम्मत करके छोटा या बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हैं,
0: ठीक है।
1: और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अनलिमिट है, वो भी कुर्बानियां कर रहे हैं, लेकिन मैं इस टाइम जो बात करने जा रहा हूँ ये करने जा रहा हूँ, कुर्बानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस अकीदत से आपने उस जानवर को लिया है उसी अकीदत के साथ जो वो कुर्बानी देनी चाहिए। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि ये जो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, देखिए जी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जब आपको ख्वाब आया कि आपने कोई प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान करनी है, आपने अल्लाह की राह में जो है पता नहीं कितने ऊंट जो है काबिल जो है, मैं कहता हूँ 100 से ज्यादा ऊंट कुर्बान की, तो फिर ख्वाब आया कि इससे प्यारी चीज, उससे प्यारी चीज, प्यारी से प्यारी आपने अपना बेटा जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया अल्लाह की राह के अंदर जो है। जब आंखों में पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधने के बाद जो है पता पड़ा कि जन्नत से एक दुम्बा आया तो वो जिबा
0: वो
1: तो भाई कुर्बानी के लिए छोटा जानवर हो चाहे बड़ा हो तो कुर्बानी कुर्बानी ही होती, लेकिन कुर्बानी की यकीनन बाकी 3 हिस्से किए जाते हैं, पहला अपना, तीसरा जो है दूसरा जो है रिश्तेदारों का हो, और तीसरा जो हिस्सा होता है उन लोगों का होता है कि जो कि मुस्तहिक लोग होते हैं, जो कि जिनके ऊपर हमारे ऊपर जो फर्ज है कि हम उनकी उनको जो है वो कुर्बानी का गोश्त उनको दें ताकि उनके जो बच्चे होते हैं। अच्छा, हमने कुछ चीजों को ना अपने सुन्नत को और अपने फ्राइज को जो है वो ट्रेडिंग यानी कि सोशल मीडिया की तरफ लेके चले गए हैं,
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: हर चीज को सोशल मीडिया पे लेकर आ चुके हैं, और फिर हम उसको फैशन में भी लेकर आ चुके हैं। भाई पहले दिन कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करेंगे भाई आपने जो है ना मुझे ना रान का गोश्त देना है, बड़ा अच्छा सा देना, अच्छा सा पीस मेरे लिए निकालिएगा,
0: ठीक है।
1: फिर आपने अच्छा दिया, मैंने भी आपको उससे भी अच्छा गोश्त भेज दिया, ठीक है। फिर आपने प्लान कर दिया कि जी हाँ अच्छी बात है कि आप दोस्तों के साथ गैदरिंग भी करें, हर चीज भी करें, लेकिन मेरा जो देखें میں کسی کے اس کی تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کچھ بھی کرے کہ مثال کے طور پر اپنی فیملی کو ٹائم دیں, دوستوں کو ٹائم دیں, تو پہلا دن ویسے بھی فیملی قربانی کا ہوتا ہے, دوسرا دن اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, تیسرا دن جو ہے وہ آپ اپنے انجوائمنٹ کے لیے رکھیں. جیسے لوگ اپنا ٹکے بناتے ہیں, کباب بناتے ہیں, تو یہ شوق پورے کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک جو بات جو حقیقت والی یہی ہے کہ آپ فریج نہ بھریں, آپ لوگوں تک وہ گوشت پہنچائیں,
0: وہ کھائیں گے تو آپ کو دعا ملے گی نا, تو آپ کی قربانی جو قبول ہوتی جائے گی. یہ تھوڑی کہ آپ نے ذبح کر دیا آپ کی قربانی قبول ہو گئی, ایسا نہیں.
1: ہاں ایسا نہیں ہے کہ ثنا آپ سے ناراض نہیں ہے, ثنا بالکل ناراض نہیں, ثنا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ثنا نے ماشاء اللہ بہت اچھا ڈریس بھی پہنا ہوا ہے, لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ثنا ناراض کیوں ہو سکتی ہے. بھائی کال کرتے ہیں, ثنا کا موڈ ٹھیک کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شاپر یہ جو خالی آیا وہ یہ شاپر خالی واپسی ہی جائے گا آپ کے ساتھ. بھائی لائن پر کال میں موجود ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلو ایک زبردست سانگ نے پلے کر دیا ہے ملکو اسٹوڈیو کا, اور یہ سانگ اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے دوست ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اچھا جی, گھر کے اندر جو ہے ایک ماحول ہے خوشی کا, قربانی کے گوشت کا, بھائی بریانیاں پک رہی ہیں اور ماشاء اللہ کڑھائیاں پکائی جا رہی ہیں, وائٹ ریڈ ماشاء اللہ, آج مزے ہی مزے ہوں گے. بھائی یہ سانگ اسپیشلی ان پیارے پیارے دوستوں کے نام کرتے ہیں جتنے بھی فیملیز ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, جن کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی ملکو کی پیاری آواز, ملکو اور نادیہ ہاشمی کی پیاری آواز.

0: ईद उल फितर जे हिन पुरमुसरद मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबपुर पारां सभिनी कस्टमर्स दोस्तन ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइन सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: अच्छा जी, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 12:51 हो चुके हैं सना, और वक्त गुजर गया पता ही नहीं पड़ा
1: ही नहीं,
0: और कहते हैं ना कि वक्त की घड़ी है गोल घूम रही है, कहाँ आके रुक जाए पता ही
1: पता
0: नहीं पड़ेगा
1: नहीं।
0: तो भाई ये वक्त की घड़ी है, घूम रही है हमारे बाद, फिर कोई और आ जाएगा वो आपके साथ, क्योंकि आपने पूरा नेटवर्क हमारा 11 बजे तक सुन रहे हैं, और 11 बजे तक अच्छे अच्छे आरजे कोयल जैसी आवाज वाले आपको सुनने को मिलेंगे। और 12:51 हो चुका है, बल्कि 52 मिनट हो चुके हैं, तो एक आधी कॉल लीजिए, हो सकते हैं कॉलर हमसे नाराज ना रहे। देखते हैं कि लाइन पर कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर
0: जी, अदा कह रहे हैं कि था कॉल किया मीठा दानिश
2: सैयद इमदाद अली,
0: सैयद इमदाद अली शाह, लगे तो गर्मी लगी हुई है शाह साहब
2: जी, यहाँ के समझ में आते
0: केड़ा हाल है, ठीक आयो
2: दुआई लगी पहन अल्लाह रे करम मना वाली दुआ करते
0: अल्हम्दुलिल्लाह। मां बिल्कुल ठीक आई, बताओ कि ईद की है पे गुजरे
2: ईद हो रहा सिलो सिलो जी जी
0: ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ ये बताओ कि ईद जानवर केड़ो सी बाकी हो तब
2: साई है ना, वैसे भाई मां कुर्बानी को ने कहिया है, बाकी ऐसा मैंने बड़ी प्यान मां कुर्बानी के भाई ने कुर्बान ना कहिया।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये बताओ कि लास्ट में छा चवण चाहिदा, मैसेज केड़ो देना चाहिदा दोस्तन के,
2: लास्ट में मैसेज जेडी ना सी ता देखे ईदा इंदी होना असन ला इंदी होना ए रसलन के परचान ला इंदी होना असा ही गदो दी देखो आए तईद जो असा सेलिब्रेट के हो सुती नमूने सा ए पने सुतन दोस्तन सा सुतिन जगह पे घुमाओ आए पने रिश्तन के सुती नमूने सा निभाने।
0: वेरी गुड, बड़ी बड़ी मेहरबानी इमदाद शाह, अल्लाह सी हमें सलामत रखे, ठीक है।
2: असन के गानो बतराई तो सर
0: गानो एकड़ो लास्ट में एड़ो गानो आप आहे मिशप सॉन्ग आ जबरदस्त सॉन्ग है, तमा के डेडिकेट था क्यों, ठीक है दोस्तन
2: की बाजी साहब वो मिनट गलाएंगे
0: बाजी अच्छी भाई। हां गलाओ
1: कैसे हैं भाई, कैसे हैं आप, ईद मुबारक आपको।
2: थैंक यू, आपको भी खैर मुबारक
1: जी, खैर मुबारक।
0: अब गलाओ
2: आप प्रोग्राम कर रही है डेली
1: जी, संडे होती हूँ, आप मुझसे बात करने आते ही नहीं, अब क्या बोलूँ आपको
2: नहीं लाइव कॉल लेती है तुम्हें,
1: नहीं लाइव कॉल नहीं लेती, आप ऐसे मैसेज किया करें मुझे,
0: आप मुझसे बात करने नहीं आते, शहर चले मजी नहीं वा
1: और
0: ठीक है ओके। अच्छा जी बिल्कुल, एक और लाइन पर कॉलर मुझे तो देखते हैं कि कौन कहाँ से भाई। अस्सलाम वालेकुम
2: सलाम
0: जी, कह रहे हैं कि था कॉल किया अजीबुला यादीबुला
2: हबीबुला हबीबुला।
0: अच्छा हबीबुला केड़ा हाल है, ठीक है हबीबुला,
2: सही टाइम गई तुम पर
0: खैर मुबारक हबीबुला, जो दया तो भागुर पाए या बे खैर आते बे ठीक है, गोठ दे मन मा लगो पियो
2: खैर सही खुश आओ,
0: ईद नमाज पढ़ी
2: हां सही दिन नमाज पढ़ी गोश्त तो
0: वेरी गुड यार, माशाल्लाह गोश्त खाते हो
2: जी जी आ खाते सही
0: वेरी गुड, पांच सेहत जो ख्याल लग जाए राणा
2: हां रे ना आयो कला मकसद दायो ने पहला फकीर है
0: हां बिस्मिल्लाह बुदायो
2: यो या मिट्टी हुक्म करे थी हजार
0: वाह
2: हुक्म करे थी हुक्म करे थी ओ हुक्म करे थी हजार या मिट्टी हुक्म करे थी हजार आसाई हो कलाम।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, अल्लाह से अवां के सलामत रखे, खुश रहो ठीक है, पांचों ख्याल रखो
2: ठीक है।
0: अच्छा भाई अभी आपसे मुकम्मल इजाजत लेने का टाइम आ चुका है, और एक दफा फिर जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, हमारा पूरा नेटवर्क सिंध का सबसे बड़ा नेटवर्क GAFM नेटवर्क लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ईद की बातें, पब्लिक मैसेज मैं जाते जाते ये देना चाहता हूँ कि नाखून अगर बड़े हो जाते हैं हमारी उंगलियों के तो नाखूनों को काटा जाता है उंगलियों को नहीं, गलत फहमियाँ अगर पैदा हो जाएं रिश्तों में प्यार मोहब्बत में तो गलत फहमियों को दूर किया जाता है रिश्तों को नहीं,
1: बिल्कुल
0: किसी को मछली देने की बजाय उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा दिया जाए ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: तो भाई आज ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन काफी सारी जो चीजें हैं उनको नोट करना पड़ते ही हैं, जैसे कि मैं हमने आपको इस प्रोग्राम के 2 घंटों के अंदर हमने चीजों को नोट करवाया, एक तो 3 इसे कुर्बानी के हैं, रिश्तेदार आप खुद और गरीब गुरबा जितने भी मुस्तहिक हैं, ठीक है अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप उन लोगों का मदद करें। तीसरे नंबर पर जो बात ये की जा रही है कि आप अपनी जात से किसी को तकलीफ न दें,
1: ना पहुंचाएं जी,
0: आप किसी
1: कुर्बानी यही है,
0: हाँ आप किसी की खुशी की वजह बन जाएं, किसी की रोने की या किसी की तकलीफ की वजह ना बने ठीक है, और खुश रहा करें हैप्पी रहा करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें आरजे सना आरजे शहबाज बुखारी को, और हमारी फाइट अभी बाकी चलेगी कि गोश्त सबसे पहले कौन किसके घर देने के लिए जाएगा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई पूरे नेटवर्क पे जितने भी हमारे छोटे बड़े तमाम जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों वाले बच्चे सुन रहे हैं, तो गोश्त खाते वक्त भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अनलिमिट नहीं खाना कि उससे क्या होता है कि पेट खराब हो जाता है। क्या
1: डॉक्टर शहबाज, तो ये डॉक्टर शहबाज हमारे पास बैठे हैं, शहबाज ये होंगे नहीं जो आपको इलाज कर पाए, ऐसे ही ना।
0: तो भाई मैं अक्सर ये चीजें सामने आती है ना, क्या हुआ भाई बदा हजमा हो गया भाई, क्या हुआ भाई खाना ज्यादा खा लिया,
1: खुलना पड़ेगा ना फिर।
0: तो भाई हम नहीं, हम तो एडवाइस ही दे सकते हैं। तो अच्छा मैं अपनी जाती बात करें, कुर्बानी का गोश्त जो है ना मैं बहुत कम खाता हूँ।
1: ये मेरे साथ भी ऐसा ही है बस,
0: क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि लिमिट्स में खा लूंगा, लेकिन कभी मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अनलिमिट खाया हो, या तो मैं खाऊंगा नहीं, या तो खाऊंगा तो लिमिट्स के खाऊं। वैसे खाते हैं, ऐसा मसला नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन खास तो जो कुर्बानी का गोश्त होता है, यानी कि तबियतन जो है या तो तबियत खराब हो जाएगी, यानी कि हालांकि ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, तो यानी कि अनलिमिट नहीं खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
1: हाँ, ये मतलब लोग हविस में खा लेते हैं, यार हमने खाना है मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है।
0: सेहत का ख्याल रखिए,
1: सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हर जगह आरजी सबास कहाँ होंगे आपको इलाज करने वाले ना।
0: एक चीज जो है देख देख कर दिल भी भर जाता है, पता है आपको,
1: लोगों का नहीं भरता भाई,
0: नहीं भरता भाई, अपनों का अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दिल तो हमारा भी नहीं भर रहा कि प्रोग्राम में छोड़ के जाएं, जो हमारे बाद और भी आरजेज हैं जो कि इंतजार करेंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाएगा और हम लाइव आएंगे। आप लोग अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एक जबरदस्त सॉन्ग प्ले कर दिया है स्पेशली अपने प्यारे दोस्तों के नाम, और अपने प्यारों का ख्याल रखें।

0: जहां हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहां
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटा।

अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 0300-3385-69

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: राम करे वतव चलो सब जेके भी लिसनर सा के बुधन प्यान एकड़ी गाल बुधी छड़ो बाबा रिजवान साहब के दा चाचा न चंदा के ये सा नंडडो छोकरो आए
1: साई ता सब गानो बानो बुधरायो को हन एडो अच्छा पंजे सामने के बुधाइंदा हलो तो ता मुझे ख्याल में कमेंट्स भी आहन ओडे ओडे आहन कमेंट्स आहन
0: कमेंट्स भी आहन
1: कमेंट्स भी आहन ए पैनल ते टेक्स्ट मैसेजेस भी आहन ए लाइव कॉल्स भी वक्त इलाही महदूदा उनाई करे जल्दी जल्दी
0: हो जाईंदासी चलो गानो बुधंदासी पर को सवाल वगैरह टॉपिक कुछ हुंदो प्रोग्राम में नहीं तो बताओ
1: वरी पहुंचाउंदा वरी कचरी के हुंदा अजीदा मां एतरो बुधाइंदो हला त जो खैर सा सिदरा अजीद लोजा है
0: जी
1: यो असा जो को सकाफती डियाड़ो ना यो असा जो मजहबी त्योहार है मजहबी जो है सो डी ईद उलोज़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इवेंट जो हज जो कुर्बानी जो तमाम गहरो ताल्लुक है असें सामिन से अज इन ईद के इवेंट के हवाले से हाल अहिवाल भी कंदासीं कुछ सवाल भी बुधाईंदासीं पुछंदासीं कुछ जवाब भी असां दींदासीं सही आ त माना असां ईअं हल्की फुल्की इन ईद के हवाले से पिया कचहरी कंदासीं सुभाणे खां अॼु शाम खां गोश्त वोश्त खाइण जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो इंशाल्लाह ताला हिकिड़ो सुठो गानो
0: चलो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग आहे असांजी लिस्ट में ॿुधंदासीं
1: मथे में सूर विझी छॾियो
0: ईद वारो प्रोग्राम त अहिड़ो हूंदो आहे जेको माण्हुनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त रिज़वान साहब आएंगे और दोनों साथ में प्रोग्राम करेंगे कुझु लोगो को अच्छा लॻंदा कुझु लोगो को शायदि अच्छा नही लॻंदा लेकिन कोई बात नही हम तो करेंगे चलिए गाना सुनिए आप तमाम लोगों के नाम और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं आप हमें कमेंट कीजिए पैनल पर मैसेज कीजिए कॉल्स भी आप लोगों की कुछ देर बाद हम जो है ना वो पिक करेंगे और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ईद की महफिल और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए

0: ओके जी, सो ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक. और यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और खैर मुबारक, खैर मुबारक अथव. अच्छा, तुम्हारे कोई सवाल पूछना है लिसनर्स का?
1: शामिल कयो ये
0: कमेंट्स मैसेजेस शामिल कयो. अच्छा हां, बिल्कुल बिस्मिल्लाह.
1: शामिल कयो
0: जी.
1: हां, मां ओ तो सरप्राइज न दिंदा, गाल मां गाल निकल दिया को याद है चाचा थी आ वाने जिस
0: पाणी आणे न दिसो. इया गाल तां जी गलत आ न, याद ता पाण इन गाल के कबूल न कयो. अगर कयो था तो पोए वरी
1: मजाक.
0: हां चलो, मजाक भले कयो. नूर संतनियो भास से गट मौजूद आन मोहब्बत तू प्यारे भाजू और चाचा खालिद जुने जो मेरे साथ मौजूद है. तवा की बीदे जू खोड सारी मुबारक हो जन. और न खालावा हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम. और निदड़ी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम. ईद मुबारक हो, कहती है ईद मुबारक दोनों को.
1: खैर मुबारक निदड़ी.
0: और ये किशोर भाई
1: निदड़ी आला 8-10 निदड़ियो आइन
0: बहन न ट्रेन. किशोर भाई हेलो. और हेंजी क्या कहते हैं ईद जे नहीं भी न अज तो खैर ईद जो पेरियो नहीं आया ना. गोश्त वोश्त वाला कम जगह ना, वो सुभाणे का स्टार्ट थियण वाला है.
1: सुभाणे थेलो बाचको खणंदा से
0: वठंदा सी या विरहंदा
1: सी? अल्लाह सई विरहण वारो. तव्हां बि माशाल्लाह क़ुरान शरीफ़ माशाल्लाह रेगुलरली पढ़ंदा आहियो ऐं तर्जुमे सां पढ़ंदा आहियो. सो अलाह साईं पंहिंजे पुराणे पाक में शुक्र करण वारे खे एतिरो पसंदि कयो आहे जो हुनखे वधीक नवाज़ण जा वाइदा कया अथई, ऐं वरी नाशुक्रे खे ओतिरो ई नापसंदि कयो आहे अलाह साईं. तो केतिरनि ई मौक़नि ते कॾहिं अहिड़े क़िस्म जो वरी मां चवंदो आहियां प्रोग्राम डिज़ाइन कजे जंहिंमें हिन क़िस्म जी शयुनि खे असां गॾिजी करे डिस्कस कयूं, कुझु मज़हब खे बि सम्झूं, कुझु जेको आहे सो पंहिंजे हे जेके असांजा मज़हबी त्योहार आहिनि हिनखे बि सम्झूं. अॼोके प्रोग्राम में हिन त्योहार खे थोरो गहराई सां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, पर लाइव कॉलर्स खां मां नंढा नंढा सवाल पुछंदुमि लाइव कॉल ते. सही आहे, हिन ईद जे हवाले सां, ईद उल अज़हा जे हवाले सां. माण्हू इन करे दाऊं कंदा
0: आहिनि. प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॿुधव त ॻाल्हियूं कंदासीं. हुन खां अलावा अगरि तव्हां असां सां जॉइन थियणु चाहियो था त तव्हां असांखे मैसेज कयो, कॉमेंट कयो, पोस्ट खे लाइक शेयर कयो ऐं तव्हांजो कुझु देरि बाद कॉल्स वठूं था. सो स्टे कनेक्टेड, ॿुधंदा रहो प्रोग्राम ईद की महफ़िल.
2: शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94.

0: ईद उल फितर जे हिन पुरमुसरद मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबुर पारां सभिनी कस्टमर्स दोस्तनि ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था। खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569 0300 33 8556 9।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03-01-96-8-51
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 03-01-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: मायो आलावाल भलो गानो ने मायो हलायो न लाए ता बुदो ता के यकीन नियो गानो सुठो लगे
1: मैं थोड़ो समझ में आयो भी थोड़ो न भी आयो पंजाबी में होयो तो बराल मड़ी कोशिश कई से
0: समझन जी ने डाडो सुठो गानो होयो आई बियो इन गाने में जिक्रो कारे जुड़े जो मा मुझे जेन में ख्याल आ ता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कजल ही गाल बुदी
0: पर ता के कारे कलर की ड्रेस पाती है
1: कारो मन
0: जिंदगी में कदे कारो कलर बदो
1: मन मानू अच्छो हो जे तो कारो पाए
0: ये थोड़ी होनो चोना है जो कलर थोड़ो मतलब लाइट हो जे तो वो लाइट कलर पाए आई जे करे मतलब जो वाइट कलर आ तो वो थोड़ा मना लाइट लाइट कलर पाए
1: मुखे मना मा डार्क कलर पांजी लाइफ में घट पाता हाने पान शुरू किया ना पर सफा एकदम तो कारे ते नहीं दिस ना
0: आस्ते आस्ते मन ये कदम आस्ते आस्ते बढ़ेंगे
1: थोड़ी क्रीम क्रीम लगे
0: जी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तमा लगायो आई तमा डेली बेसिस ते व्हाइटिश लवली क्रीम यूज कयो तमा फेयरनेस क्रीम त लाजमी
1: आम तौर ते बुदंदा ये सर्दिन में अनबियो ने इन मौसम में भी
0: जी बिल्कुल व्हाइटिश जी लवली क्रीम चका नो ता फेयरनेस जे तौर ते आए तमा डेली कारे वनु था कमकाज के हिसाब से तमा लगाए वनु ता जी स्किन आई उन में व्हाइटिश लवली में सनस्क्रीन भी ऐड थेल आ है तो तमा हां
1: सुबाने का अनंदम पर मैं एक शर्त ते हां इरफान साहब के चंदम मुडे सैंपल मोकले मुफ्त वारो
0: पो ये ता चंद तो सब लिसनर भी जना ता सारे भी सिंपल मोकलो सैंपल मोकलो
1: चलो इन ते एकड़ी ऑफर था जाऊं ठीक है हाँ ईद के बाद में तेजे प्रोग्राम थी ना उनमें अस डेली बेसिस से सामीन के इंशाल्लाह ताला मुफ्त वारियों क्रीम
0: चलो ये जबरदस्त इन तरीके जो कोई प्रोग्राम डिजाइन
1: सिर्फ क्रीम होना उन संग जैसा या भी गिफ्ट भी दिंदा चलो
0: मैं एक गिफ्ट हैम पर दिंदा या इन गाल ते मन साबित रह जो इन तो लिसनर मुजो मत खाई
1: ना कंदा हूं वो पूरी कंदा हूं जका नचंदा हूं वो भी पूरी कंदा हूं
0: ये करे को थियो वाक्य होता
1: फिल्म में डायलॉग वाला एकड़ी फिल्म जो मैं कहता हूं वो
0: करता
1: हूं जो नहीं कहता
0: वो मैं डेफिनेटली करता हूं
1: नेटवर्क में तो ईद उल अज़हा जो खोड़ सारी मुबारकू हुजन अल्लाह सईं तव्हांखे खुश रखे बड़ी ख्याल रखिजो उज़ाई उज़ाई कयो त भारत हुजे
0: अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ ही चवन था रिजवान साहब चाचा खालिद मुखे भी चाचा खालिद था कोठियो देन हाउ इज फीलिंग चाचो भी माने ने शे जो इजहार करे तो
1: हां जगह वो कुराड़े वाली गाल कही मु गाडे
0: या वैसे सही गाल हां
1: बस मुखे चाचा मुखे हाने पे गलती जो अच्छा सिद्रा चाचा चवे गाल थई थी पर मां भी चा थई थी फोटो तो आए ना चाचे जो बला केड़ो मुखा तो वडो आ ना चाचो
0: चलो बता
1: अदा दादो आ अल्लाह
0: दादो तो वैसे हुंदो ने
1: हां ना
0: दा अन्या केरे सा दादा ना
1: माना या मुजा बार ही ना नंडड़ा इन माशाल्लाह अल्लाह हयाती दे सलमान के अनि गुड़िया के तो अन्या नंडड़ा है ने अन्या 5 6 क्लास में जा पड़े चाचे जा तो पोटरा डोटरा 5 6 क्लास में पड़ा
0: अर्शद मरी भी हमारे साथ ही तमाकी भी अर्शद भाई मुबारक हूँ निदा कहती है माशाल्लाह हाँ जी आपकी ओपी आज अच्छी लग रही है वैसे ये तो रिजवान साहब ने आपको पहले बता दिया कि आज सिद्रा जाकर घर नजर उतरवाइएगा
1: नजर सड़वाइएगा
0: सड़वाइएगा
1: सड़वाते है ना चूल्हे पे
0: सही गाल है सही गाल है तो सिंधी आयु
1: जी आगे चलो चले भाई चले डबल है डबल
0: है दीपा
1: गुलशन डिस्को मस्कान अलासिफ सुराव गोड सुराव गोड सुराव गोड
0: सुराव गोड तेरी गाल याद आई
1: चलो लतीफ हो जाए चाचे फिरोज बुदायो
0: बिल्कुल याद आवे ना ता चाचा फिरोज के चाचा फिरोज चोकोटी
1: बडो आ मुका हलायो कसमा
0: बस साल हां अच्छा जाहिद अली बुर्दी भा तमाम मोहब्बत हूँ और अब्दुल रजाक हमारे साथ हैं और दर्दे दिल हमारे साथ, दर्दे दिल का नाम भी वैसे निदा है। अच्छा। तो निदा आपको भी वेलकम करते हैं और उसके अलावा मीर मुमताज अली जतोई हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, सनाउल्लाह बिरोई हमारे साथ हैं और हैं जी अली रजा कड़ो कलोड़ो और अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि रिजवान भाई को हमने ज्यादा एड में सुना है, आज लाइव सुनकर सच में ईद थी भाई, अल्लाह
1: वाह वाह मेहरबानी अदा स्मार्ट किशोर।
0: अच्छा फरजाना बहार जो चलो मां कोशिश कदम चाचा यो गानो हलाइनासी अगर
1: चाचे बुधायो त पोते यो चनाएन त मौका भी है दस्तूर भी है
0: चलो लिंक तमा थी सके त शेयर करे वजो शो त यो गानो गोरण में को आसानी थी वई थी वेंदी। आदिल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, तमा जूं भी मौजूद हूं इन प्रोग्राम। आदिल हुसैन भी हमारे

ईद उल फितर के इन पुर मुसरत मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबपुर पारा सभी कस्टमर्स दोस्तन वतन अजीज के अवाम के दिल के गहराइन से ईद जो लख लख

0: सरहद मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जी प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफा पांजन समूरन कस्टमर्स दोस्तन ऐं अजीजन वतन अजीज जे अवाम के दिल जे गहराइन सा मुबारकबाद पेश कजे थी।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन

0: बुजुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर राबते 0385569

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: मौके पे मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क वाइस चांसलर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर उस्तादन शागिर्दन दोस्तन ए वतन अजीज के अवाम के दिल की गहराइन से ईद जो लख लख वाधायूं पेश करें तो पारा डॉक्टर जाहिद हुसैन सेतो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: साथ यहाँ पर जो है ना, हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। वक्त इतना तेजी से गुजरता जाता है, पता ही नहीं चलता, और आज तो कुछ ज्यादा ही जल्दी गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमारे साथ प्रोग्राम में जो है सर रिजवान भी मौजूद हैं, और वो जरा आप लोगों की कॉल्स लेने के चक्कर में है कि भाई कॉल्स ली जाए लिसनर्स की,
1: और अल्लाह करे कि कॉल शामिल करने में हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि मोबाइल का जो मैं मूड देख रहा हूँ तो थोड़ा सा खराब लग रहा है।
0: तो नहीं नहीं,
1: ख़वातीन आज़ाद, आज ईद कुर्बान है, बकरा ईद है, ईद उज़्ज़ा है, जो भी नाम आप इसको दे दें, तो खुशियों भरा दिन है, तो गाल भी ठहेगी इंशाल्लाह। मैंने जो पूरा बना के रखा था कि हम अपने कॉलर से, सुनने वालों से बात करेंगे कॉल पे, तो अल्लाह करे मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। ख़वातीन आज़ाद, तव्हां खे ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि। बाबा गोश्त खाओ त थोरो
0: हल्को
1: रखिजो।
0: वैसे तव्हां सुबुह छा खाधो?
1: मां सुबुह चिकन खाधो।
0: चिकन खाधो बस? रुगो चिकन खाधो।
1: चाय वाय खां पो वरी थोरो चिकन हुयो, जेसी ताईं वरी पाड़े मां को गोश्त बोश्त अचे।
0: सही, तव्हां पाण त सुभाणे कंदो।
1: तव्हां छा खाधो?
0: असां बि चिकन खाधोसीं, छो त अमीअ चयो अॼु चिकन खाओ, सुभाणे गोश्त खाईंदासीं।
1: न
0: न, असां तव्हांजे आसिरे आहियूं।
1: सुभाणे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कल खपे ओजरी खपे
0: असांखे चिकन खपे मुर्गीअ जो। वैसे मूंखे गोश्तन में ख़बर न आहे, पवंदी वॾो गोश्त, नंढो गोश्त, बस मुर्गी ई ख़बर हूंदी आहे, त मुर्गी मुर्गी हूंदी
1: आहे। तव्हांखे गोश्त घुराइणो हुजे न, नंढो गोश्त घुराइणो हुजे त पैसा मूंखे ॾिजो,
0: तव्हां वॾो गोश्त वठी ईंदो। फ़र्क़ु छा हूंदो आहे हुन में?
1: फ़र्क़ु हाणे इहो मां ईअं कीअं सम्झायां हिते,
0: सम्झाए सघो था?
1: गोश्त गोश्त हूंदो आहे न, इहा
0: ई ॻाल्हि आहे न, गोश्त गोश्त वॾो छा नंढो छा,
1: बसि पैसा मूंखे ॾिजांइ नंढो गोश्त खाइणो।
0: हलो ठीकु आहे, ओके। सो मासूम आहे न मां ॾाढी,
1: अलाह सां पूजड़ो मासूम सभिनी खे करे।
0: न वैसे मासूम आहियां, वैसे चालाक बि आहियां।
1: पोइ अमीअ तुंहिंजो मासूम नालो छो न रखो? मासूम
0: आहे न, बसि मुंहिंजो नालो भलो रखियो आहे न ॿिन्ही नबू अमीअ।
1: कंहिं रखियो हो नालो?
0: सिदरा अमी वारनि, अमी ननाणनि रखियो, सदफ जेको आहे अबू वारनि रखियो, ॾाॾाणनि रखियो, ॿ नाला, ॿई फैमिलियूं राज़ी।
1: सही आहे ख़वातीन हज़रात, मां असल में इहो सोचियो त मां पंहिंजे सामिन खां इहो सुवालु पुछंदुमि त पंहिंजो ईद उल उज़्ज़ा ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जो केतिरो जेको आहे सो तालुक़ु आहे, वास्तो आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो ईद उल उज़्ज़ा सां कहिड़ो तालुक़ु आहे, कहिड़ो तालुक़ु आहे? असां आमतौर ते चवंदा आहियूं न त भाउ इहो जेका क़ुर्बानी कंदा आहियूं इहो ई सिर्फ़ु हिन सां रिलेट आहे, बल्कि सिर्फ़ु इहो हिन सां रिलेटेड न आहे, इन खां अलावा बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं, वाक़ियात, अरकान आहिनि जेके हज़रत इब्राहिम अलाम सां रिलेटेड आहिनि। हीअ ईद ईअं सम्झो 90% हज़रत इब्राहिम अलाम जी सुनत आहे। सो बहरहाल हाणे कॉल जी मां कोशिशि कयां थी, तव्हां को गानो वानो ॿुधायो त मां
0: ओके। गाना त खोड़ सारा आहिनि जेके ॿुधंदासीं, हीअ वारो सॉन्ग आहे, हीअ वारो गानो असां ॿुधंदासीं। तव्हां ज़रा कॉल जी तरफ़ वञो, मां कुझु मैसेजेस ॾिसी वेठां थी, केरु केरु आहिनि, छा छा चवनि था।

0: ओगे सर सगन मौजूद हैं बाजी, आपको और आर रिजवान को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। इमरान अली बिरोई भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और इरम आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। और ये हैं जी सबनी आरजेस के तवाजी फैमिली के शो बुदड़न के मुलाल सलामत ईद मुबारक सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी भाई असा के सखर खान ज्वाइन कयो आए सो मोहब्बतू प्यारे बाजू और तवा आखिर
1: मां दिसा दो अल्लाह करे हले। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, रिजवान के आयो ठीक आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। शिकारपुर वारो आ छा?
0: हां
2: जी जी जी
1: दिस मता
2: ना। अस्सलाम वालेकुम भेण सुतो।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, साला खुश आयो?
1: बकरो छो कोई बो
2: घटी
1: बकरे की प्राइस घट वरी
2: क्यों
1: होंगी? सत हिस्सा हूँ बकरो अकेलो हों बाबू हाँ सत बकरा कर घने जा थी गया सत लख जा घने में सत बकरा तो माना लख रुपये सत लख थी भाउ सस्तो की महंगो
2: आहेरा
1: चाचा
2: अच्छा
1: न किथे एतिरा ॾींहं शिकारपुर में अलाह कंदो ख़ुशि हूंदो। ॿियो को दोस्तनि खे को मुबारक ॾियणी आहे त बिस्मिल्लाह असां हाज़िर आहियूं।
2: जी सर, सभ खां पहिरीं तव्हां ऐं हुन खां पोइ भेण सुधो।
1: हा

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: चलो असां इंतजार कंदासीं हा पचाए कचो न कचो न पचाए मोकिलियो त जीअं असां तंहिंमहिल ई खाई सघूं
1: तव्हांखे
0: त कुझु खपे ई न थो
1: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी केर था ॻाल्हायो जमालदीन साहब ख़ैर लॻो पिया ईद में मुबारक हुजनि भाउ ईद वीद ॾिनी आहे ॿारनि खे ख़र्ची वर्ची ॾिनी
2: आहे
1: माशाला मुंहिंजो बि आहे जेस अकाउंट ख़र्ची मोकिलियो
0: माशाला
1: तव्हांखे ख़र्ची त न मिलंदी आहे न तव्हां त ॾियण वारा आहियो न माशाला अलाह साईं ॾियण वारो करे भाउ वठण वारो न करे हा माशाला अॻे नंढड़ा हूंदा हुआसीं त वठण वारा हुआसीं हाणे वरी ॾियण वारा थी
2: आऊं
1: घणी ख़र्ची ॾींदा आहियो ॿारनि खे सच ॿुधाइजो न न ॿुधाए ॿुधाए पोइ बि लेखो त हाणे लेखियो त ॿाहिरनि जो बि हूंदा आहे त ॿार आहिनि

0: चलो सही है माशाल्लाह। बियो ईद मुबारक हूं कंगे जानियो तो बिस्मिल्लाह।
1: हां इंदा तला भयो आने मतला भयो आरू मीरानी है जे दोस्त बजन का जल आवाज वनी तो सबने के भयो भयो के लख लख मुबारक हो ईद जो अस्सलाम वालेकुम।
0: पहरो मुबारक वालेकुम सलाम। असन जी आवाज भाई पूरी सिंध में पे वने बाबा पूरी सिंध में पे वने सोनी सिंध में पे वने आवाज ताला जी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। टाइम शुरू कर।
2: वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई।
0: अब वो केर था गलायो वरी दिस वरी दिस एकड़ी कॉल सही थी अचे वरी एकड़ी गड़बड़ थी करे ये जो
3: ये तीन दो।
0: हेलो अबा आवाज थोड़ो कट जे पे थोड़ो पांजी लोकेशन चेंज कर जो
2: जी जी।
0: हां हां सही हां ने भी आ इते भी जाए ता न चुर जा रोके ठीक आयो पई गुजरे ईद सही गोश्त खाओ था याद कजो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तां बुधायो कहां जे पखो जो हले पखो पखे जी आवाज थी अचे दा मुसाफिर न करे परदेसी न करे कंहिंखे अलाह साईं हर कोई पंहिंजे प्यारनि सां गॾु हुजे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह दी केरु थी ॻाल्हाए केर थो ॻाल्हाए भला अदा हा सही आहे सही आहे। ॿियो केरु आहे ओड़े पाड़े वारा मिट माइट डोर डगा गोश्त घणो खाधो अथई छा आवाज़ नेटवर्क जो खानो ख़राब लॻो पियो आहे सिधा इन करे ई कॉल वाक़ई न वठंदी
3: आहे।
0: बसि छा कयूं असांजे नेटवर्क ख़राब लॻो पियो अलाए तव्हांजो अलाए असांजो। अस्सलाम वालेकुम।
1: मोहब्बत
0: जंहिं ॻाल्हि खां चिड़ वठे तूं उहा ई ॻाल्हि करे सुठी ॻाल्हि न आहे न आवाज़ कटिजे थो भा जतोई साहिब मां छा चवां आवाज़ थोरो थोरो
3: अच्छा हज़ार खान कहते माशाल्लाह सरिज़वान कितने फनी है सरिज़वान त माशाल्लाह तव्हां सही मूड त ॾिठो न आहे सरिज़वान जो ॾाढा फनी आहिनि मोहबती माण्हू
0: कावड़
3: त ॾिठी आहे। अच्छा इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त माण्हू तक़रीबन चवंदा आहिनि त रिज़वान साहिब जेको आहे त मतिलबु जेको आहे न त मूंसां मतिलबु मूंसां पर्सनली सिद्रा सां कावड़ शायदि घटि कंदा हुआ पर जेतिरी सर रिज़वान मूंसां कावड़ कई तॾहिं कंहिंसां बि न कई हूंदी
0: मां
3: आहियां जे बर्दाश्त कयो
0: तव्हां
3: इहा बि ॻाल्हि आहे पर मतिलबु बर्दाश्त जी

0: ख़्वातीन आज़ाद दिलि लॻंदी आहे त पोइ सुकून त
1: थींदो
0: आहे न इहा त माना ॻाल्हि ई न आहे न माण्हू चवंदो मां दरिया में टपो ॾियां थो त ॿुॾंदो मां हीअ ॿुॾंदे त सही अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे न सो सुकून त तबाह थींदो न आख़िरी कॉल वठंदो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: टाइम
0: ई चलो मैसेजिस।

0: लिबरो ही हमारे
1: जैसे
0: साथ
1: देखो किसी की शायरी चुराते नहीं है, मसला है हमें बहुत बड़ा मसला है।
0: अच्छा गोट गड्डे जी,
1: हाँ गड्डे जी,
0: रानीपुर नाओ कराची से लाड़काना से गुलाम सरवर सुमरो एजाज अली सुमरो आप रिजवान साहब बाजी मुस्कान पूरी टीम और एफएम और मेरे दोस्तों को दिल से ईद मुबारक आपने बोला है जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू आप हमारे साथ साथ हैं। नेटवर्क चेंज कयो प्लीज हां के नेटवर्क चेंज हाने त ता पाणी चोंदा त
1: मां ये बई टई गालियों कयो इंशाल्लाह इन ते अमल कयो दा
0: ओके सो प्रोग्राम जो टाइम खत्म थी वयो वरी इंशाल्लाह तमा से सुभाणे भी तमा से गडू दा प्रोग्राम में रिजवान साहब की ता
1: हां जी एक कुर्बानी जो डियाडो आ अल्लाह से कबूल करे पर जे मां टाइम दे फारिग थी हम ता इंशाल्लाह मां कोशिश
0: दिसो हां ता पाण मनु ता त मां बिजी हो दो है ये काफी बिजी रहने वाले इंसान है
1: और बड़े बड़े वड्डे वड्डे लोग ते वडियां गलियां
0: वड्डी वड्डी गलियां
1: बहरहाल ॾाढो सुठो लॻो इलाही अरसे खां बाद में पंहिंजे सामान सां मुखातिब थियण जो मौको ॾिनो थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा तव्हांजो तव्हां साल में हिकिड़ो दफ़ो मौको ॾींदा
0: आहियो
1: ॿ दफ़ा हिकु दफ़ो नानीअ ॾे वेंदी आहे न
0: हिकु दफ़ो इहा बि ॻाल्हि आहे उहा बि त तव्हां प्रोग्राम कंदा आहियो न उन ईद ते बि
1: यार वाकई बहरहाल सुठो लॻो हाणे प्रोग्राम जो टाइम पूरो थी वियो आहे मूंखे इजाज़त ॾियो तव्हां पंहिंजो
0: बसि ठीकु आहे ओके इनशाला वरी सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थियण वारी आहे हिकु बजे खां टे बजे ताईं हिन ई प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूदु हूंदासीं सो हीउ प्रोग्राम स्पेशल तव्हां ताईं पहुचाए वञे पियो जनाब वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कयो पिया ऐं कंदा रहंदा ऐं खोड़ सारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सभिनी जूं मोहबतूं आहिनि सो मोकिलणु नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत

पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में ईद उल अज़हा मजहबी जोश ए जज्बे से मल्हाई पई वञे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर ए कोयटा समेत मुल्क के नंढनि वॾनि शहरनि में ईद नमाज़ जा इज्तिमा मुल्की सलामती जे लाइ दुआऊं घुरियूं आहिनि। सुनत इब्राहिम तहत अलाह जी राह में जानवरनि जी कुर्बानी जो सिलसिलो बि जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी नवाब शाह में ईद नमाज़ अदा कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ लाहौर में ईद जी नमाज़ पढ़ी। के टी न्यूज़ तरफ़ां आलम इस्लाम खे ईद जूं खोड़ सारियूं वाधायूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त दुश्मन जे नापाक इरादनि खे हर क़ीमत ते नाकाम बणाईंदासीं। भारतीय सरपरस्तीअ में थींदड़ दहशतगर्दी बर्दाश्त, दहशतगर्दीअ जूं गुज़रियूं कारवायूं क़ौम ऐं पाक फ़ौज जे हौसले खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। बलोचिस्तान जे अवाम सां गॾिजी दहशतगर्दनि जो आख़िरी हद ताईं पीछो जारी रहंदो। फील्ड मार्शल ईद उल अज़हा बलोचिस्तान जे ज़िले ज़ूब में अॻियनि मोर्चनि ते मुक़रर जवाननि सां गॾु मल्हाई। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल जवाननि सां गॾु ईद नमाज़ पढ़ी ऐं खेनि ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। मुल्क जी सलामती, अमन, इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली जे लाइ ख़ासि दुआऊं। फील्ड मार्शल शहीद निजात गार ते हाज़िरी बि भरी।

صدر مملکت آصف علی زرداری ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त ईद उल अज़हा अताअत इलाही सब्र अख़लाक़ ऐं ईसार जो अज़ीम सबक़ ॾिए थी। हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत इस्माइल जूं क़ुर्बानी मुस्लमाननि जे लाइ मशाले राह आहे। क़ुर्बानी रुगो मज़हबी फ़र्ज़ न पर मुकमल अख़लाक़ी पैगाम आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ईद उल अज़हा सुनत इब्राहिमी क़ुर्बानी ऐं ख़ुदा जे अताअत जो दर्स ॾिए थी। अलाह मक़सद जे लाइ जान ख़्वाहिशूं ऐं मुफ़ाद क़ुर्बान करण ईमान जो महराज आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज़ सादिक़, वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां बि

0: मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003

0: तो डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खान
1: दस्तरखान वसी करने का, खुशियों को बांटने का, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। रब्बे जलील से दुआ है ये ईद हम सब के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आए।

गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। वो जिनको बेसबब ठुकराया है दुनिया वालों ने, गले उन बेसहारों को लगाओ, ईद का दिन है। अखुवत भाईचारा दोस्ती अखलास फैलाओ, मोहब्बत के दिए घर घर जलाओ, ईद का दिन है। वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वो बचपन फिर इन्हें वापस दिलाओ, ईद का दिन है। किसी के वास्ते ना नफरत रखो अपने सीने में, जो रूठे हैं उन्हें चलकर मनाओ, ईद का दिन है। कम अज़ कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, कम अज़ कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर। सभी मिलकर दुआ को हाथ उठाओ, ईद का दिन है। गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। जनाब, वंस अगेन हम और आप फिर से साथ साथ, तमाम सुंदर समातों को अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, ईद उल अज़हा मुबारक। जनाब जी, अमीर प्रकाश FM 88 की ऑल टीम मेंबर्स की जानिब से, जी FM 88 नेटवर्क की जानिब से, ऑल इंतजामिया की जानिब से, हर पाकिस्तानी को दिल की गहराइयों से, बल्कि हर पाकिस्तानी के साथ साथ आपकी फैमिलीज को भी ईद की ढेरों ढेर खुशियां, मुबारक, दुआएं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आप पर रब पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए, और ये ईद ईद जो है आपके लिए ढेरों खुशियाँ और ढेरों मुसर्रतें, और आपके आंगन में ढेरों ढेर कामयाबियां और राहतें लेकर आई हो। और एक और रिक्वेस्ट है कि ईद कुर्बान, इसका मेन मकसद, इसका मेन जो वर्ड है कुर्बान, कुर्बानी, ये जिन वर्ड्स की जो डीप मीनिंग है ना, इसका मतलब जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो तारीखी एक यादगार जो है वाकया, जो हमारी जिंदगियों की बुनियाद है, उससे रिलेटेड है। लेकिन मौजूदा दौर में मैं इस कुर्बान जो लफ्ज़ है ना, कुर्बान, इससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अना को कुर्बान कीजिए, हसद को कुर्बान कीजिए, बुग़्ज़ को कुर्बान कीजिए, कीने को दिल से निकाल दीजिए, इन तमाम नेगेटिविटी को आउट कीजिए, और ये त्यौहार आपके दिल पे, आपके घरों में और ढेरों ढेर रौनकें लेकर आए। आपके लिए हमारी जानिब से बहुत सारी बेस्ट विशेज फॉर यू, बिकॉज वी आर फैमिली। आई होप कि बहुत अच्छी सी ईद गुजर रही होगी आपकी, आज आपसे बहुत सारी गपशप भी करनी है, अगर मुझे आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत से लोग मसरूफ होंगे, लेकिन अगर कोई इस समय मुझे सुन रहा है, तो उसे जो है आज हम अपने लिसनर से पूछने वाले हैं कि आप मुझे बताएंगे वो कौन सी स्पेशल डिश है बकरा ईद की, जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं ये वाली डिश मुझसे अच्छी कोई भी नहीं बना सकता, या मेरी अम्मी से अच्छी ये वाली डिश कोई भी नहीं बना सकता ऑल वर्ल्ड में, या मेरी बहन बहुत ही लजीज ये डिश बनाती है, ऐसा जायका किसी के हाथ में नहीं है, ये हमारी बेगम जो है वो डिश जो बनाती है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेम वैसे ही जायके वाली डिश कोई और बनाए। ये आज का टॉपिक है। और बताइए कैसी गुजरी है आपकी ईद। और आई नो वेरी वेल, मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन तुक्का लगाती हूँ बहुत ही बेस्ट गुजर रही है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ईद का जो मेन मकसद है, प्लीज उस पे थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। डीप फ्रीजर और फ्रिज भरने के लिए ईद नहीं आती है, ये उन मुस्तहिक लोगों के लिए आती है जो ऑल एयर जिंदगी की गाड़ी घसीटने में बहुत ज्यादा तगड़ों में मसरूफ होते हैं। तो असल मुस्तहकीन को प्लीज अच्छे से गोश्त दें, इतना दें कि एक टाइम कम से कम वो बना के खाएं, और आपको ढेरों ढेर दुआएं दें, साफ सुथरा गोश्त दिया करें, वो ही वैसा ही सेम चीज दें जैसी आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो मेरी जानिब से ये पहला गीत आप सबके लिए, स्पेशली किड्स के लिए।

0: तुम्हारे आने से ईद होगी के मुस्कुराने से ईद होगी, तुम्हें ही देखूं मैं आज हर पल इसी बहाने से ईद होगी, उदासियों को बुला दो जाना के गम बुलाने से ईद होगी, बुला लो सबको मगर तुम्हारी मुझे बुलाने से ईद होगी, तुम जो आ जाओ तो बहुत अच्छी मेरी जमाने से ईद होगी, हंसोगी जब तुम हंसूंगी मैं भी कहाँ रुलाने से ईद होगी, दुआ करो के खत्म हो दूरी के पास आने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी के मुस्कुराने से ईद होगी। बहुत से लोगों की ये दिल की आवाज है, प्लस मेरी भी, बहुत से लोग जो हैं वो अपने प्यारों के वेट में होते हैं। तो आपने जो है ना ये इस जो त्योहार का मौका है इस पे अगर किसी के साथ आपको जो है पास्ट में कोई इशू रह चुका है तो उसको भी आपने अवॉइड कर देना है, अना को बिल्कुल भी आपने ऊपर नहीं रखना है। अगर आपके लिए पर्सन अहम है, रिलेशन अहम है, तो आपने उसे फोकियत देने का कोई भी फायदा नहीं है। इस आरजी फानी दुनिया में हर शख्स मेहमान है, तो कोशिश करें कि आप जिंदगी ऐसे जिए आपकी दुनिया से जाने के बाद भी आपको गुड वर्ड्स में याद किया जाए। और मैं अपने तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग अफोर्ड कर रहे थे, जिन्होंने कुर्बानी का एहतमाम किया है, जिन्हें रब ने तौफीक दी है कि वो कुर्बानी के फरीजे से जो है गुजर रहे हैं, कुर्बानी का जो है फर्ज अदा कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है किसी को झड़कना नहीं है। आपने अगर कोई भी आपके दरवाजे पर जरूरतमंद आता है, मैंने बहुत सी जगह पे नोटिस किया है कि जो गरीब लोग होते हैं कहीं कुर्बानी हो रही होती है वहां जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गोश्त दें कुर्बानी का, और जिनको थोड़ी बहुत अक्लो फहम होती है वो उन्हें जो है रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप वेट कर लें, हम आपको देते हैं, अभी गोश्त तैयार हो जाए तो देते हैं आपको। और कुछ लोग जो है जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, मैं जस्ट यही कहूंगी, वो जो है ना बहुत ही रॉन्गली बिहेव करते हैं, नेगेटिविटी जो है वो कुछ भी फायदा नहीं देती आपको या हमें। और आपको ये भी अच्छे से मालूम है ये जो ईद कुर्बान है इस पे हम ईद कुर्बान पे जो कुर्बानी करते हैं ये मुस्तहकीन के लिए होती है, उनका एहसास करने के लिए होती है। तो आपने बिल्कुल भी उनके साथ नेगेटिव बिहेव नहीं करना, अगर कोई आपके दरवाजे पर आया है तो रब की रजा के लिए उसे सबसे अच्छी और बेहतरीन जो है ट्रीट कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और मैं अपने तमाम सामेन को अगेन, जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो ट्यून किया है GFM88 नेटवर्क की जानी से, ढेरों ढेर ईद की मुबारकें दूंगी आपको। और आपको वेलकम भी कहूंगी अपने प्रोग्राम में। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके घर की वो स्पेशल कौन सी डिश है ईद उल अज़हा की, जो आप समझते हैं कि ये जो ये वाली डिश है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और हमसे ज्यादा अच्छी और लजीज बनाए, तो ये आज आपने मुझे बताना है। ओके, और आपकी कॉल्स के लिए आपको डायल करना है 03133615688। और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है MPK, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। आपकी कॉल्स की जानिब करते हैं मूव। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, चलिए जी आपकी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट कॉलर को मौका देंगे अपने प्रोग्राम में शमूलियत का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, माजरत कहूँ, आपकी आवाज, खूबसूरत आवाज जो है वो हमारी समातों तक नहीं पहुंच पा रही। आप जो भी कोई हैं आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? अदा भलीकार चौथा तमाखे, ईद मुबारक। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, और जनाब मैंने पूछा है वो कौन सी डिश है, खुसूसी डिश ईद उल अज़हा की, जो आपके यहाँ बनती है, आप कहते हैं इतनी अच्छी और लजीज डिश किसी और के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र, वेलकम कहूंगी अदा, ईद मुबारक। कौन बात कर रहा है?
1: मैं दरिया खान बात कर रहा हूँ।
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: باجی ٹاپک کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, بس میں بتا رہا ہوں.
0: جی گڈ ہو گیا, بہت شکریہ ادا. اور واقعی جب زندہ ہوتے ہیں نا ہمیں قدر کرنی چاہیے, کیونکہ پھر بعد میں قبر پہ جا کے رونے سے اور بین کرنے سے جو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا بندہ یا بندی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی نے دو اور جیو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ویلکم کہیں گے ادا, کون بات کر رہا ہے؟ ادا عید مبارک, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ تھینک یو, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا ادا, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو. چلیے جی, آپ کی کال بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اوکے, گوٹ ویسرے کانور مری بھلی کار چوں تھا ادا تماں کے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام علی جلوری کا خالق لاشاری گلائے
0: ادا عید مبارک, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ تھینک یو, ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: ٹاپک کے بارے میں بکرے کے گوشت کی بریانی منا منگی بھیڑ تمام خوشی کھائی ہے, جکو آؤں تمام
0: ٹھیک ہو گیا. اوکے جناب, عید مبارک آل آف یو, ویری ویری اسپیشل ڈے یقیناً بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. اور یہاں پر ہم موو کریں گے ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب, اور بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: सदा हंसते रहे जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम सबको जाए भूल, चारों तरफ फैलाए खुशी मुबारक।
1: वो 11 बजे का शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन, गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो, बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर ए तजुर्बेकार डॉक्टर जी।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: ईद उल फितर जे हिन पुरमुसरद मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहराबपुर पारां सभिनी कस्टमर्स दोस्तन ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइन सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5769।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: दुआएं आप देखे जिंदगी में बेशुमारी दें, दुआएं आप देखे जिंदगी में बेशुमारी दें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहारी दें। वंस अगेन वेलकम करेंगे अपने तमाम सामईन को जी मीरपुर खास एफ एम 88 के लाइव स्टूडियो से। आपके साथ आरजी गुलनाज और नमकीन ईद की तीखी खुशियां लेकर हम भी आपके साथ साथ। और जनाब, हमने आज आपसे पूछा है कि वो कौन सी स्पेशल डिश है बकरा ईद की जो आप समझते हैं कि आपके यहाँ इससे ज़्यादा लजीज जो डिश है वो किसी के बस में भी नहीं है कि कोई इससे अच्छी डिश बनाए। और ये जो डिश है ना, ये लाजवाब बनती है आपके यहाँ। और जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने डायल करना है 03136615688। आपकी कॉल्स की जानिब मूव करेंगे, अपने लिसनर से जानना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से इनके दिल की बात। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम बाजी गुलनाज, कैसे हो? आपको चाचर बात कर रहा हूँ लाड़का नाम से। आप सुनाए,
0: मैं
1: ईद मुबारक।
0: मैं बहुत अच्छी, आपको भी भाई ईद मुबारक। और ये बताइए, कैसी गुजर रही है आपकी ईद?
1: ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। आपका दोनों घंटा प्रोग्राम चलेगा लाड़का में या एक घंटा आज?
0: ये शायद ईद का दिन है तो शायद कंफर्म नहीं है, मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने मालूम ही नहीं किया।
1: अच्छा, मेरे दोस्त सुन रहे हैं
0: जी,
1: चाचू वफा सुन रहे कस्बर वापस चले दुखती, आपको सलाम। आज आरती अमीर शो करेगा? नहीं
0: आज तो नहीं, कल रात शायद होगा शो, कल रात 8 बजे के बाद शायद।
1: ठीक है, आपकी मेहरबानी, उनको सलाम, आरती मुश्तबा को भी सलाम।
0: चलिए, दोनों आरजे की जानिब से आपको ढेरों ढेर ईद की मुबारकें। बहुत के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मेरा प्रोग्राम था, मैं अभी आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ और नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, ईद मुबारक। कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे आपको। कैसा गुजर रहा है आपका ईद का दिन? अच्छा, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी बकरा ईद की स्पेशल डिश है जो आप समझते हैं आपके यहाँ जो ये बेहतरीन डिश बनती है और किसी के बस में नहीं है, इसकी ये वाली डिश बहुत बेहतरीन बनाए?
2: वो गुल हकीकत यह है कि हमें पसंद तो है लेकिन 70% बाकी ये है कि हर ईद पे हमारे जो डिश होती है ना वो बिरयानी होती है।
0: अच्छा, आपके यहाँ जो बिरयानी बनती है वो बहुत लजीज होती है?
2: हर ईद में प्लस में और भी कुछ चीजें होती हैं
0: जी,
2: बाकी बिरयानी जो जेन्युइन होती है ना वो बिरयानी होती है।
0: चलें, बिरयानी लवर्स वैसे ही पाकिस्तान में बहुत हैं। बाबू अदील अबड़ो, थैंक यू सो मच, आपको ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप शामिल प्रोग्राम हुए।
2: रिक्वेस्ट है थोड़ा जा।
0: जी,
2: तो दो लाइनें सुनाऊंगा आपको मैं।
0: जी प्लीज, दो लाइंस क्योंकि ब्रेक करीब है।
2: कंद आए परे कोई तो डोरे
0: बहुत खूब जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह
2: हाफिज़।
0: होगी जी। और जनाब, ईद की तीखी तीखी खुशियां, बहुत से लोग जो है वो कुकिंग भी करेंगे आज और बहुत से लोगों ने पहले से प्लान्स बनाए हुए होंगे कि हमने ये डिश भी बनानी है, वो डिश भी बनानी है। आपकी क्या प्लान्स हैं इस ईद को लेकर, आपसे जानने के लिए नेक्स्ट कॉलर को शामिल प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम प्यारी बेना।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा अली हसन, कैसे हैं आप?
3: ईद मुबारक प्यारी बेना आपको।
0: आपको भी दिली ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप शामिल प्रोग्राम हुए। भाभियों को भी ईद मुबारक।
3: खैर मुबारक, सब सुन रहे हैं प्रोग्राम प्यारी बेना। बस मेरे घर में बिरयानी भी ज्यादा होती है, जो गोश्त भी है, मुर्गी भी है, पर मेरी माशाल्लाह फैमिली ज्यादा है तो सारा सब कुछ شکر ہے مالک کا سب کچھ کرتے ہیں.
0: ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن آپ نے جو ہے سچ بتانا ہے کہ کون سی ڈش کون بہترین بناتا ہے, ٹھیک ہے؟ ایک نام بتانا ہے, دو تین نام نہیں بتانے. ہیلو,
3: ہاں پیاری بہنا, میری بہن ہے وہ اچھا کھانا بناتی ہے.
0: چلیں آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہن کا نام لیا ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. چلیں اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ سمیت, آپ کی بہن سمیت سب بہنوں کے نصیب اچھے کریں, آمین. بہت شکریہ ادا, تھینک یو.
3: میرا دوست قربان خان کے لیے, قربان خان کے لیے عزیز بھائی جو بہن بھائی جہاں بھی جو بھی سن رہے ہیں سن طرف کے, عید مبارک پیارے بہن آپ کو زیادہ میں زیادہ
0: آمین, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ ادا, تھینک یو. اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور یہ عید ہر آنگن میں آئی ہو, مسکرائی ہو. دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ عید قربان کا ریئل میننگ جو ہے نا, پلیز اس پہ پورا اتریے گا اور کوشش کیجیے گا. جو اصلی مستحقین ہے نا قربانی کا گوشت, بہت ہی طریقے سے آپ ان میں تقسیم کر سکے. رب کائنات آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. ایک بریک کی جانب جاتے ہیں.

0: दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का। ईद मैं हूँ गुलनाज, तमाम सुनने वालों को नमकीन ईद उल अजहा की तीखी तीखी खुशियाँ मुबारक।
1: गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

दुश्मन जो नापाक इरादन खे हर कीमत ते नाकाम रहंदासीं भारतीय रस्ते में जिन दहशतगर्दी बर्दाश्त जोगी ना है दहशतगर्दी पढ़ी खेन वाधा पढ़ी

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे

0: इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-385-569
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मौके पे मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क वाइस चांसलर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर उस्तादन शागिर्दन दोस्तन ए वतन अजीज के अवाम के दिल की गहराइन से ईद जो लख लख वाधायू पेश करें तो पारा डॉक्टर जाहिद हुसैन सेतो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि ग़ैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो ॿारनि बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

हसरत है तुम्हारी दीद करें, हसरत है तुम्हारी दीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। कुछ देर तो दिल को चैन मिले, कुछ रोज तो मन के फूल खिले। कहते हैं ईद की आमद है, तुम आओ तो हम भी ईद करें। जब गम के बादल छाए थे, उस बार भी तुम ना आए थे, इस बार भी तुम ना आए हो। सब दुश्मन ये तनकीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। माना कि हम दीवाने हैं, सब बातों से अनजाने हैं, जब अपने ही बेगाने हैं, क्या गैरों से उम्मीद करें। तुम आओ तो हम भी ईद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामईन को। जी मीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नमकीन ईद की तीखी खुशियां। अमर रमेश कुमार खत्री लिखते हैं, बकरा ईद मुबारक कबूल हो। सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। लतीफ चनेसर गुट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शुगर शंकर गुल शर्मा, बिरयानी वाले, अरे वाह बिरयानी वाले भाई भी आ गए हैं प्रोग्राम में। वेलकम कहते हैं आपको जनाब, बहुत शुक्रिया आपको भी ढेरों।

चलिए जी, प्यारा सा गीत आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए इस गीत को। इस गीत के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम एंजॉय कीजिएगा GFM88 नेटवर्क की जानिब से, आरजे गुलनास की जानिब से ढेरों ढेर बेस्ट विशेस। दो घड़ी तेरी दीद हो जाए, अपनी भी ईद व ईद हो जाए। ईद के दिन जब भी करीब देखे, मैंने अक्सर उदास

0: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: ईद उल अज़हा के पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी के प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफा पांजन समूरन कस्टमर्स दोस्तन अजीजन वतन अजीज के अवाम के दिल के गहराइन से मुबारकबाद पेश कजे थी।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिं।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202024246010।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: गपशप भी जरूर करें। लेते हैं शो की पहली पहली कॉल। गाना नहीं चलाते हम आपको, ज्यादा इंतजार वैसे भी नहीं कराते क्योंकि आप हमें बड़े प्यारे हैं, हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा देर इंतजार ना करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक सबरी साहब गडदा अली हसन बाबू साहब तमाम के ईद जो पहरियो डी तमाम घणो मुबारक हुजे। केड़ा हाल आहिनि तव्हांजा, छा था कयो? अच्छा वाह वाह वाह, ईद जो पहिरीं ॾींहुं तव्हां नमाज़ पढ़ी करे कुर्बानी कई आहे या न कई आहे? अच्छा सही सही सही, त माना अॼु तव्हांजो मेन्यू छा छा आहे? तव्हां जेका घर वारनि खे ॾिनो आहे त भाउ मूंखे इहो बि खाइणो आहे, कबाब बि खाइणा आहिनि, चपली कबाब बि खाइणा आहिनि, कुरमो बि खाइणो आहे, माना छा छा तव्हांजी फेवरेट आहे जेका तव्हां चओ था त तव्हांजे घर में पचे?
1: इश्ताक भाई जी, मैं तमाम पंहिंजी फैमिली की गंजा पर हर शइ कई आहे, बिरयानी आहे, मुर्गी आहे, हर गंजा शुक्रा माल।
0: न बाबा न न, मुर्गी अॼु जे अॼु जे ॾींहं में मुर्गीअ जो कहिड़ो कमु भाउ?
1: मुर्गी वरी घुराई
0: मुर्गी सॼो साल खाईंदा आहियूं बाबा, अॼु मुर्गी खे टारियो सफ़ा ख़तमु कयो, साइड ते कयोसि,
1: मुर्गी ख़तमु कई आहे, बाक़ी गोश्त मिलियो आहे, भाकुरो आहे, गोश्त आहे।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐं तव्हां जेका आहे तव्हांजे पाड़े वारनि अगरि त कुर्बानी कई आहे त पंहिंजी घिटियुनि मोहल्ले खे साफ़ करे छॾियो आहे या अञा ई उहा गंद उते पियो आहे?
1: न न न सफ़ा करे छॾियो आहे, इश्ताक भाई मां इहो जेके बि कनि कुर्बानी
0: थींदो आहे त माण्हू जेका हूंदा आहिनि ईद जे सीज़न में नओं फ्रिज वठंदा आहिनि, ॿ ॿ फ्रिज वठंदा आहिनि त जीअं गोश्त फ्रीज करे सघूं। हा एग्ज़ैक्टली, अलाह साईं सभिनी जी कुर्बानी क़बूल करे ऐं जेका जेका मुस्तहिक़ माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी खे गोश्त विरिहाइजे त जीअं सवाब सभिनी खे मिली सघे। अच्छा अली हसन बाबू साहब, तव्हां इहो ॿुधायो, आया आहियो असांजा पहिरियां कॉलर थी करे, त तव्हां कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था अॼु? कहिड़ो गानो कहिड़ो, सॉरी मन में मेर न आहे।
1: ओके
0: मुनवर मोलाई सही आहे, कंहिंखे डेडिकेट करणु चाहियो था दादा?

0: सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां ईद मुबारक। असांजे बाबर साहब जेको वॾो मैनेजर आहे, बाक़ी रुखसार भाती ऐं तव्हांखे बि ईद मुबारक।
1: थैंक यू सो मच असां अली बाबू साहब, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। अलाह हाफ़िज़। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ बहुत प्यारे से अली हसन बाबू साहब, और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: ईद मुबारक
2: भाई। मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक हो?
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: आसिफ सावल।
1: आसिफ सावल साहब, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक हो आपको।
2: आपको भी ईद मुबारक। मेरा ठीक है, तुम बताओ कैसे हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताओ आपने कहाँ से कॉल किया मुझे? कहाँ से?
2: मोरो।
1: मोरो, मोरो, हमारे बहुत प्यारे शहर मोरो से आपने हमें कॉल किया है। ये बताओ आज का ईद का दिन कैसा गुजरा? सो सो के तो नहीं गुजरा कहीं मेरी तरह?
2: बेहतरीन बेहतरीन गुजरा है।
1: क्या किया सुबह नमाज पढ़ के आपने? अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर सो के उठे तो क्या खाया आज स्पेशल डिशेस? अच्छा, तो अभी आपने अभी तक गोश्त से बनी हुई कोई स्पेशल डिश नहीं खाई है? इट मींस
2: नहीं नहीं।
1: क्यों भाई क्यों?
2: बस।
1: अच्छा बस। अच्छा ये बताओ कि अब क्या इरादा है? अब उठ गए हो, शाम को कहाँ जाना है? दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर?
2: जाऊंगा।
1: अच्छा गुड है, गुड है। पता है मैंने क्या किया? मैंने तो कल ही सबके घर होकर आ गया। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, मैं ईद वाले दिन बिल्कुल नहीं आऊंगा क्योंकि मैं सोऊंगा और बहुत गर्मी है।
2: दोस्तों के याद करना आया हूं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद किया दोस्तों के। थैंक यू आसिफ सावल, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ आसिफ सावल फ्रॉम मोरो, और जनाब आप भी हमें कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
1: के रथा सर सबनी सा गजो
3: सोना साईं भाई का जत्ते को गला केटी शाबेले का
1: केटी शाबेले वाले सबनी दोसन के आई जायद भाई के ईद मुबारक।
3: अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा बात ता के ईद मुबारक ता जे पूरे टीम के जे के भी दोस्त बुरा दाई जन लख लख मुबारक।
1: थैंक यू अदा आसिफ नाल बुधायो
3: जायद जतो
1: जायद भाई बुधायो केटी शाबेले वारन ईद की कई आई? असल में शहर में त शाम जो ॾींहुं शुरू थींदो
3: आहे।
1: शहर में त शाम जो ॾींहुं शुरू थींदो आहे न असांजो?
3: न न, असां वटि सवेर ते बसि जेको ई डपाई जाॾे घुमो घुमी अचे पोइ अला अला करे मोटर ते लॻी थो हर कंहिंखे।
1: अच्छा माशाल्लाह, तव्हां खफ़ो लाइ आया आहियो, घुमी फिरी आया आहियो, खाई पी आया आहियो?
3: जी जी बिल्कुलु।
1: वाह वाह, गुडा गुडा यार, ज़बरदस्त। ज़ाहिद भाई इहो ॿुधायो त जेको हाणे मां गानो थो प्ले कयां मां नंबर मलाईअ जो, इहो कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
3: असांखे ॿियो पलाउ ॿुधायो तव्हांखे थोरो चवंदासीं।
1: कहिड़ो कहिड़ो?
3: असां ॿुधाइजो जला चांड जो हिन ईद ते अचिणो प्यारो फिरी आयो सोणो सजण आयो जंहिंजी जुदाई में कारो में वेठो पातो।
1: ईद आ गई ओ मेरा यार नी आया। भला इहा सूर सभिनी खे छो हूंदा आहिनि त ईद अची वई आहे, असांजो यार न आयो आहे, असांजो प्यार न आयो आहे, छो भला?
3: बसि ॾिसो था माण्हू लाइ काॾे लॻे दोस्त दिलासो ॾेई गुम था थी वञे इहे कलाम ॿुधणा पवंदा दुख
1: न। मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो, दुनिया वञी चंड ते पहुती आहे, असांखे पंहिंजे यार जी फिक्र आहे त यार कोन आयो आहे निभागो कम हूंदो सघो? असां हिन शींहर में निकिरंदासीं त कोई अॻिते ॿुधंदासीं न? अच्छा ठीकु आहे, मां पाण ॿुधाइण जी पूरी कोशिशि थो कयां। कंहिंजे नाले करणु चाहियो?
3: तव्हांजे नाले कंदासीं, जेके दोस्त ॿुधंदा वेंदे वेंदे सभिनि दोस्तनि खे ईद मुबारक, जेके ॿुधंदा ख़ासि करे तव्हांखे तव्हांजे टीम खे।
1: थैंक यू सो मच ज़ाहिद भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो।
3: वॾी महिरबानी,
1: अलाह हाफ़िज़। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर द कॉल। और जनाब ये मुझे ये फंडा समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये फंडो समझ में नथो अचे। जनाब जी ईद ईंदी आहे त आशिकनि जा टड़का हूंदा आहिनि, माना हर जेको आशिक हूंदो आहे सैड हूंदो आहे, कपिड़ा बि कोन पाईंदो आहे, यार न आयो, अरे निभागो काॾे मरी वियो यार, कोई कमु हूंदसि, कोई कार हूंदसि, सौ जहान में कमु आहिनि, उहो कमु करे पोइ ईंदो न बाबा न, असांजो यार अॼु अचे बाबा, टे ॾींहं ईंदा आहिनि, कंहिं बि ॾींहुं अची सघे थो। अस्सलाम वालेकुम। आते ही ड्रॉप हो गई, पर कोई गल नहीं है जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम। अदा जानी ईद मुबारक। थैंक यू मुझा मिठा। केर पे गलायो, किथा पे गलायो? अली नवाज पिताफी तव्हांजे ॻोठ वारनि ईद कीअं कई आहे, तव्हां कीअं कई
0: आहे?
1: ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मज़े जी ॻाल्हि आहे त तव्हांजी ईद सुठी गुज़री आहे ऐं गुज़रे थी ऐं ॿ ॾींहं ॿिया बि गुज़ारींदा। किथे घुमण फिरण विया हो? अच्छा सही सही सही सही, गर्मी थी पई आहे, पंहिंजो ख़ासि ख़्याल बि रखो ऐं कुझु थधा मशरूबात बि पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो त जीअं तव्हांखे गर्मी न लॻे, ऐं रुमाल वुमाल वेड़ो वञो बाबा, गर्मी इलाही पई आहे। हा गर्मी इलाही यादि आहे, गर्मी वाक़ई इलाही आहे। अच्छा इहो इहो ॿुधायो पिताफी भाउ, त गानो ॿुधाइण वारो आहियां, मुंहिंजो नंबर मिलाई जो, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? सिर्फ ओके अदा, ओके हींअर थो प्ले कयां गानो, ठीकु आहे दा, थैंक यू जी। जनाब मुनव्वर मुलाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जनाब हमें भी प्ले किया जाए, तो हम प्ले करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने लिस्टनर्स, अपने दोस्तों, अपने कॉलर्स को भी अटेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
4: वालेकुम सलाम,
1: कौन हमारे साथ?
4: दुआ कंवल।
1: दुआ कंवल
4: जी,
1: दुआ कंवल ईद मुबारक हो आपको।
4: खाली मुबारक
1: बाकी गोश्त मां भी कौन खणी आयो आ गोश्त वोश्त मां बि हिते कोन खणी आयो
4: आहियां।
1: अच्छा ईदी खपे, ईदी
4: ईदी
1: ॾोकड़ मरी वियासीं भाउ, असां पाण ॾोकण लाइ सिकूं था, किथां कोई ॾोकड़ अचनि। तव्हां खे असां ॾोकण जे बदिले असां तव्हांखे गानो ॿुधाईंदा, तव्हांजी फरमाइश जो अच्छा कहिड़ो कर्ज़ु गानो न ॿुधायो मां मरी वियासीं। ईद जे ॾींहुं बि मयारूं। अच्छा हाणे कहिड़ो गानो ॿुधणो अथव ॿुधायो? हैलो दुआ कंवल, हैलो, ओ शिट, दुआ कंवल की कॉल हो गई है ड्रॉप पर, कोई बात नहीं है, हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: केर अदा सां सभिनी सां गॾु? अब्दुल वाहिद जतोई
0: जी, जी अब्दुल वाहिद।
1: वाहिद भाउ कहिड़ा हाल चाल आहिनि, ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ईद जो ॾिहाड़ो कीअं गुज़रे थो तव्हांजो? मज़ेदार
0: जी, जी
1: ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो गानो थो ॿुधायां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? जलाल चांडो ॿुधाईंदोमांव, पर हींअर जेको आहे फरमाइश आई आहे मुनव्वर मुलाई जी। थैंक यू सो मच वाहिद भा, हमारे साथ है जना वाहिद भाई, और वाहिद भाई के बाद अब लगता है गाना प्ले कर ही दें, क्योंकि गाना हम जब तक प्ले नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। हम मुनव्वर मुलाई प्ले कर चुके हैं, और जनाब आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त मुस्तहिक अफराद तक जरूर पहुंचाएं, और इसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले को भी साफ रखें, जिस एरिया में आप कुर्बानी कर रहे हैं वहां पे कोई आलाइश ना हो, कोई खून ना हो, और सब कुछ सफाई करें ताकि आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें।

0: ईद उल अजहा के पुर मुसर्रत मौके पर जिए सक
1: ईद उल अज़हा के खुशियन भरियन मौके ते आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेरापुर तरफा समूरे मुसलमान भाइरन के ईद जो मुबारकू पेश कजन थियो।
2: जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

और फिर जब आप काकासाई आपको मिलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है जनाब? अरे जनाब फिर जब वो मोहल्ले में आता है बेचारा बड़ी शान शौकत के साथ अपने तीन चार चेलों को लेकर, और फिर जब गाय वाय को या बकरे बकरे को गिराते हैं तो उस वक्त कुछ मोहल्ले वाले भी होते हैं, और जनाब जब मोहल्ले वाले होते हैं तो फिर बहुत सारे मशवरे दे रहे होते हैं, इसको ऐसे ही कर लो, इसको वैसे कर लो, इसको ऐसे काट दो, इसको वैसे काट दो, मतलब इतने सारे मशवरे होते हैं और आप बीच में पजल हो जाते हैं कि यार मैं कसाई की मानूं या इन लोगों की जो कि मेरे मोहल्लेदार है। तो फिर बाज औकात बहुत ज्यादा बंदे हाइपर हो जाते हैं और फिर ग्रीष्म ग्रीष्म तक नौबत आ जाती है, क्योंकि एक तो गाय और बकरा नहीं लेट रहा होता, ऊपर से फिर इनके मशवरे और कसाई के नखरे, ओ गॉड यार बहुत मसला होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हुआ है तो आप जरूर मुझसे शेयर करें, आप हमें कॉल करें 03000 11 34 88 पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें नीचे हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक आईडी पर भी आप हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ले दस पाई फेर की हो गया। चले जनाब कोई बात नहीं, हमारा जो

0: हुजे, थधी हवा हुजे, ॿियो छा खपे? गर्मी छॾे आहे। अच्छा, इते त सफ़ा टाइट गर्मी लॻी पई आहे। अच्छा, त मां तव्हांखे गानो ॿुधाइण वारो आहियां। सजण ॿई गॾु हुयासीं भाई जलाल चांडियो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? हलो जखराणी भाउ, गॾु वियो? हेलो, कॉल त हले थी पर तव्हांजी आवाज़ नथी अचे। असां सभिनी सां गॾु आहिनि शब्बीर हुसैन भुट्टो, चवनि था ओके ईद मुबारक भाई। सिकंदर अली चवनि था सुबुह से जॉब में बिज़ी हूँ आज न्यूज़ में। ओके जनाब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगर जबार को मैंने पार्टी का कहा था तो कहते हैं इन्वेस्टर बाबर साहब। बिल्कुल जनाब, आप मना लें उनको और अच्छी सी पार्टी अरेंज करें। जखरानी भाई हमारे साथ ही, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और अब लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक मुझा प्यारा भा, नालो चाहे किथा प्या गलायो? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, केड़ा हाल चाल न था तांखे? ईद मुबारक हुजेव। थैंक यू। मूंखे लॻे थो त हाणे तव्हां निंड मां उथे आयो। अच्छा अच्छा, सवेल जो उठायो त ईद जो ॾिहाड़ो तव्हां कीअं था गुज़ारियो? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इहो ॿुधायो, जलाल चांडियो जो गानो ॿुधाइण वारो आहे, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: जलाल चांडियो।
0: हा, इलाही फरमाइश आई आहे त जलाल चांडियो ॿुधायो। अच्छा अच्छा जी, जी जी सही
1: जी।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। माना असांजी पूरी टीम खे तव्हांजी तरफ़ां ईद मुबारक।
1: जी जी जी,
0: थैंक यू। तव्हांखे बि असांजी पूरी टीम जी तरफ़ां ख़ैर मुबारक अदा, ईद मुबारक बि। थैंक यू।

शो सुन रहे हैं, तो हार्दिक किंग 47 को हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। हार्दिक किंग साहब 47, आप हमें सुनते रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और जलाल चांडू का गाना जनाब हम डेडिकेट करते हैं हार्दिक किंग 47 को और अपने तमाम दोस्तों को, तो सुनिए और हमारे साथ

0: iron store halani wholesale depot a name to be trusted
1: sariya garder tier angle channel patti lohi darwaza silver ja chong cement reti crash ai rang wagera bazar ka bahar ya dastiyab ahin
0: hane yacho mehran iron store nazd baloch petrol pump national highway halani
1: rabte lae proprietor gulam nabi mughal 03003204372 ai 02424601000
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा

तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायतें मौजूद इरशाद ऑटोस से पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03 20 18 00 003

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तोकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: अशफाक आ चुका है आपके साथ, एक घंटा हमने और आपने साथ गुजारा ईद का पहला दिन। और जनाब ईद के पहले दिन हमारा शो है ईद की धूम विद अशफाक नियाज़ी। हमारे साथ है नज़ीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान से, कहते हैं अगर इंसान खुश हो तो उसे बारिश की बूंदें हंसती और मुस्कुराती और परिंदे गीत गाते नजर आते हैं। उदास इंसान के लिए यही बादल घिरिया करते दिखाई देने लगते हैं। सब मौसम इंसान के अंदर होते हैं, जैसा मोड़ हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। क्या बात है जनाब, नज़ीर खोसो साहब आपने बहुत प्यारी सी बात की। और वाकई इंसान के अंदर का मौसम अगर अच्छा हो तो उसे बाहर की गर्मी, बाहर की तपिश, बाहर की बरसात, बाहर का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर इंसान के मौसम का अंदर का मौसम ही अच्छा ना हो तो फिर उसे बाहर के अच्छे मौसम भी बुरे लगते हैं। तो हमारी यही दुआ कि तमाम लोगों के अंदर का मौसम बहुत अच्छा हो ताकि उसने बाहर के हर मौसम से वो लुत्फंदोज हो सके। अली रजा तुमरानी हमारे साथ मौजूद हैं, ईद मुबारक कहते हैं। थैंक यू सो मच अली रजा तुमरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हलीम लाशारी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी हमें ईद मुबारक कहते हैं। थैंक यू सो मच हलीम लाशारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और जनाब हमारे साथ साथ मौजूद हैं, 6:14 हुआ चाहते हैं शाम के ढलते साए, धूप बदस्तूर वैसी है और गर्मी बदस्तूर वैसी है। आप लोग यकीनी तौर पर बहुत सारी मसरूफियात में मसरूफ अमल होंगे और उनमें से एक मसरूफियत है हमें सुनना, हमें सुन रहे होंगे। लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ?
1: आपको सबसे पहले
0: मुबारक। नसीम
1: हाफिज लखमीर मोरो।
0: हाफिज लखमीर मोरो, कैसे हैं भाई मोरो वाले हाफिज लखमीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भारी जी दुआ मुंह वट मौजूद है। मोरो जा मौसम की आए
1: सर? मोरो जा मौसम यो आए जो है गर्मी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ही ऐसा नहीं कोई तो पानी वगैरह भी कहे पे हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम की सुन्नत जी का है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: अल्लाह पाक वहाँ की भी किसरे के ना भला ने दिए जी सच के वहाँ के मदीन आने साइए जी जियारत नसीब फरमाए आमीन हजरत इमाम हुसैन हुसैन जी सच के में
0: आमीन सुमा आमीन। हाफिज साहब ये बुधायो तो जेका मानू गोश्त फ्रीज करे रखंदा आइन पांजे खाइन ला रखंदा आइन आई गरीबन मुस्तहकिर में नडी नाइन तो उन ले छा चवण चाहो था?
1: सर माउनन के ये चवण चाहो था तो भाई कुर्बानी हुंदी जेका है जेका असन दे कुर्बानी खर्च कई वई है ते सब खा पेरा जेके असा माजूर आयूं जा जेके असा गरीब आयूं तो पेरा पेरा सब खा पेरा उन जो हक है
0: उन जो हक है एग्जैक्टली जी जी
1: इन खा पो जे को है तो भली अगर पाने वट रखे पर की सके तो
0: बिल्कुल बिल्कुल पेरिया हिस्सो गरीबन जो है वो बेओ हिस्सो ता पांजे वाला रखो ता भले रखो।
1: सर असा जी सवाल का है तरीके ये मैं फरमाइश बतायो
0: जी जी केड़ी केड़ी केड़ी
2: मुबारक
0: खामोश कंदो
2: जी जी
0: एक मिनट।
3: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: जी जी
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तो गर्मी पई थी तां जे गोठ में या थोड़ो सही मौसम थी वियो आहे?
2: सर गर्मी नाले आहे बिल्कुल गर्मी जो मौसम आ रही है।
0: हाँ अच्छा अदा मुख्य ये बुधा जेका मानू कुर्बानी कंदा आइन ऐ उनजे बाद जेका है पांजे घिटी पांजे हो मोहल्ले के साफ कोन कंदा आइन उन लाइ छा चवण चाहो था बाबा कोई नसीहत रे उनन के त किन कचरो जेको है पांजे जेका मौजूदा स्पॉट्स आइन उनन ते उछलायो न या बस हर जगह ते किन कचरो पयो हुंदो आ?
2: अरे बिल्कुल इहा तव्हांजी बहितरीन ॻाल्हि आहे। जेको गंद किचरो आहे हिन खे असांखे वधि में वधि सफ़ाई करणु घुरिजे, ऐं सफ़ाई निस ईमान आहे ऐं असांजे नबी साईं जो ख़ुदि फरमान आहे त बाबा सफ़ाई रखो, सफ़ाई निस ईमान आहे, जेको सफ़ाई रखे थो उहो अलहमदिल्ला हुनजी सिहत साफ़ सुथरो रहनि करे।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, ऐं तव्हांजो पाड़ो अगरि सुथरो हूंदो साफ़ हूंदो त माण्हू तव्हांजी तारीफ़ कंदा न, त माना तव्हां क़ुर्बानी बि कई आहे ऐं कुझु बि न आहे, माना साफ़ शफ़ाफ़ लॻो पियो आहे। गानो ॿुधाइण वारो आहियां, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? जी जी बिल्कुल,
2: सभ खां पहिरां मुंहिंजो मोहम्मद इमरान आहे, इब्राहिम शाह
0: जी जी,
2: ऐं महमून शाह
0: जी जी, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं हमेशह खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो। अमल करना होगा और आपको वो चवंदा ना चुरण पुरण पवंदो वफ़ा वही जितो ही असां सभिनी सां गॾु आहिनि।
4: साईं बिल्कुल बिल्कुल,
0: ॾिसो मां तव्हांजी आवाज़ खे तव्हांखे सुञाणे थो वञा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबिलो,
0: केटी शाबिलो
4: सखर आहे, माना रोड़ी ऐं सखर जे विच ते आहे।
0: वाह वाह वाह वाह, मज़ा माना रोड़ी त बि वठो था, सखर सां बि वठो था,
4: ख़ुशि नसीब दरिया जे कड़ ते ॻोठा।
0: वाह वाह, ईद मुबारक।
4: साईं ख़ैर मुबारक,
0: ख़ैर
4: मुबारक, अॻ में त तव्हांखे स्पेशली भाजपा कंदासीं, ईद मुबारक वफ़ा अब्दुल वहीद जते तरफ़ो, ऐं तव्हांजे सॼी टीम खे, जी भाई बाबर आहे, जी बाजी सुमिरा ताणी आहे, जा नाई जा रुखसार आहे, इनखे ईद मुबारक, पर सिक भरियो सलाम बि।
0: वालेकुम अस्सलाम वफ़ा भाउ, तव्हां इहो ॿुधायो, ईद ईद तव्हांजी कीअं गुज़रे थी?
4: साईं सुठी सुठी बहितरीन, छो त महांगो बिल्कुलु आहे, पर असां हिमथ न हाराई
0: आहे,
4: असां हद अंदरि जेको ख़र्च आहे उहो कयो आहे, मिसाल पंहिंजो लटो कपिड़ो ज़मानो, बाक़ी बिल्कुलु महांगा पाए, ईद बहितरीन गुज़री, मिटनि माइटनि सां गुज़ारीसीं,
0: हिकिड़ो
4: भाङ खणबो आहे न, मिसाल सत भाङा हूंदा
0: आहिनि,
4: उन में फजर उमेद आहे त खणंदासीं।
0: अच्छा इहो ॿुधायो त कसाई कयो अथव बुकिंग या पाण कंदव?
4: न पाण पाण।
0: हा सही आहे, कसाईं त इलाही नखरा थी विया आहिनि।
4: बिल्कुलु बिल्कुलु
0: सही पाण। सही हा बिल्कुलु ठीकु आहे, त इहो ॿुधायो, हाणे हिकिड़ो दोस्त मूंखे फरमाइश कई आहे हाफ़िज़ साहिब,
4: दोस्त फरमाइश करे आहे, पर जेको तव्हां टॉपिक आहे त इन ते त कुझु ॻाल्हायो न।
0: कहिड़ो टॉपिक?
4: जेको तव्हां चओ पिया
0: सफ़ाई जे हवाले सां।
4: हा त सफ़ाई जे हवाले सां
0: जी बिल्कुलु, तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांखे खुली छूट
4: आहे। ईअं आहे त मिसाल हाणे तूं पंहिंजे दर जे अॻियां जा किथे बि उज़ाई कई आहे
0: जी जी,
4: त उहा तोखे सफ़ाई करणी आहे, मिसाल
0: बिल्कुलु,
4: वरी अॻियां मां कई आहे, मूंखे सफ़ाई करणी आहे, बाक़ी जे हथ हथ ते ॾेई वेही रहंदा त बाबा सरकार ईंदी उहा खणंदी, त पोइ इहो पंहिंजे लाइ मसलो बणबो,
0: पंहिंजे लाइ मसलो बणबो, छो त सरकार किथे किथे पुॼंदी, भाउ सरकार करे त थी, पर हाणे सरकार जा माण्हू बि कुझु अहिड़ा आहिनि जेका थोरा घणा सुस्त आहिनि असां जहिड़ा, त पोइ किथे पुॼनि था किथे नथा पुॼनि, पर कोशिशि त करे थी न, पर पंहिंजे पाड़े जी पंहिंजे घिटी जी सफ़ाई त असांजे फर्ज़ आहे न।
4: बिल्कुलु ज़ाहिरु ॻाल्हि
0: आहे, जंहिंजी ताईं सरकार न ईंदी असां धप में मरी वेंदासीं।
4: नंढड़ो अर्ज़ु
0: जी जी,
4: त माशाला तव्हांजे प्रोग्राम में सुठी कालंग हले थी, मुंहिंजा त पघर निकिरी पिया, पर माशाला काल लॻी वई।
0: अच्छा वाह वाह वाह वाह वाह,
4: अॻिले मां तोखे जुमी ते जेको अॻियूं प्रोग्राम जलाल चयो मां, पर कोन ॿुधायो तोड़ ताईं, मां कनाए कनाए थकी
0: मां जलाल हाणे तव्हांखे ॿुधायो थोरी देरि पहिरीं,
4: न उहो त अॻु हाणे ॿुधायो न, उहो मां बिल्कुलु ॿुधो, पर मां अॻिले हुनजी थो ॻाल्हि कयां, पर हाणे असांखे नगमो जेको हे हाणे अदो अलॻि कहिड़ो मास्टर मंदुर चई वियो नी,
0: ओके
4: इहो ई मूंखे ॿुधाए जो स्पेशली, पर ना कजो यार असांजी
0: मास्टर मंदुर कहिड़ो,
4: जेको हे दोस्त ॿुधायो त मूंखे हे नगमो ॿुधायो,
0: ईद आ गई मेरा यार नी आयो,
4: हा त इहो मास्टर जो आहे नी।
0: अच्छा मास्टर जो आहे न, हे त मुंहिंजे ख़्याल नदीम अब्बास लूने वाले जो आहे।
4: कोहूं तो मुख्तलिफ बरे मास्टर है आवाज़न बैठा हुआ
0: हाँ है पंजाब जो नदीमा है ऐसा जो मास्टर आप
4: नंढड़ो भाटो आली राजा जो इन वक्त कन दिन रेडियो बुधे तो अली राजा खोड़ सारा सलाम दे वो मुझे भाव जहर में जत मुझे भाटो आया था जतो आस चाचा लाड़कानी खाऊं
0: जी
4: तेरे खाऊं बाद में बाबर शेख साहब खोड़ सारा सलाम भाणी जा मुझे रफीक जतो बुधे तो भाणी जी रफीक जतो ईद मुबारक भी बाकी जे बुधन था वफा अब्दुल वहीद जते पारो ईद मुबारक भी बाय बाय
0: थैंक यू सो मच भाणे जो वरी गोश्त गोश्त खाने में फ्री होंदो थैंक यू दा जी जनाब गोश्त भी खाइए ईद भी मनाइए दोस्तों के साथ मिलिए भी सही और जनाब इस ईद को शानदार भी बनाइए और हाँ मुझे भी कॉल कीजिए आपके साथ हूँ मैं शाम के 7 बजे तक और ईद के तीनों दिन मैं आपके साथ आऊंगा और 5 से 7 तीन दिन आपके साथ होगा हमारा और आपका साथ और हम और आप मजे करेंगे जनाब ईद के शो ईद की धूम में लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम सबनी सागर कश्मोर वाला भाग केड़ा हाल चाल है न माशाल्लाह माशाल्लाह ईद मुबारक हो जाए तांखे थैंक यू ईद किए था गुजारे दा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तांखे असन जो प्रोग्राम किए तो लगे अच्छा हाँ एवन प्रोग्राम में गाना तो बुधाया के जे नाले था करना चाहो सही सही सही तांजी कॉल भी ड्रॉप थी थी तांजी सिग्नल ड्रॉप थे दादा ओके सर कश्मोर खां सभी गड हो प्यारा भाई हाँ वो शो जी एक भी नेक्स्ट कॉल दिसूँ लाइन सभी गड केर है ईद मुबारक तमाम सभी दोस्तों के जिन वक्त बुधन था जिते जिते असि आवाज बने थी तुम असा के कॉल कर सको था 03000113488 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम
0: केर दास सभी गड
5: जावेद
0: जावेद बलोच साहब तक सभी का पैनी ईद मुबारक
5: मुबारक
0: खैर मुबारक खैर मुबारक ईद ये तो बुधायो ईद कि गुजरी ती सुठी गुजरी थी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त सुठी गाल है तो बुधायो गानो तो बुधाया कें जे नाले था करना चाहो जी जी तुम्हारा सिग्नल ड्रॉप जी जी जी जी
5: जी दो चार पांच
0: सही ओके ओके घने घने तांजा सलाम पहुंची पहुंची भी आना था थैंक यू सो मच तांजी आवाज ड्रॉप थी आई एम सॉरी असा सभी से गड़ा है अस्सलाम वालेकुम चाचू वालेकुम अस्सलाम चाचू कोई सॉन्ग चलाइएगा ईद स्पेशल मेरे लिए आप अपनी पसंद पर ओके जनाब जारा खुशी सालार समेजो और कश्यप जारा हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू कोई स्पेशल सॉन्ग चलाइएगा ईद के लिए मेरी पसंद पर जारा खुशी सालार समेजो और कश्यप जारा हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब मैं भी प्ले करता हूँ जारा खुशी सालार समेजो कश्यप जारा और हाफिज साहब की फरमाइश पर एक बहुत प्यारा सा गाना ईद आ गई है मेरा यार नहीं आया तो इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा GFM88 नेटवर्क पर हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक तो जनाब हम प्ले करते हैं एक बढ़िया सा गाना तो इस गाने को सुनिए और हमारे जबरदस्त से शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए जो कि शाम के 7 बजे तक आपके और हमारे लिए पेश कर रहा है GFM88 नेटवर्क तो सबको सुनने वालों को एक बार फिर से ईद मुबारक

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: एक और कॉल। तमाम दोस्तों को ईद मुबारक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: उस्ताद। वालेकुम सलाम मुझे प्यारा भाई, केरे सा सबनी सा गडो।
1: आप तो पहले चाहते थे लारकाने खाने का खावा होना पर लारकाने में ब्रेक दिया ले काने बंदी
0: है। आई हाय चाहती अली लारकाना में
1: ब्रेक ब्रेक बप्पा।
0: लड़काने वाला थोड़ा माना सिग्नल जी जो मसलों दो ना इन लिए थोड़ा मंजे मुझे ख्याल में पोइत्यान। थैंक यू सो मच। तमाम के भी खोड़ सारी ईद जी बधाई हो जन। यो बुधायो तो ताजी ईद की गुजरी ईद तमाम सती
1: गुजरी आवाज
0: सुन जाए 14 वाह वाह वाह। हाय हाय गर्मी दाढ़ी आ। यो बुधायो लड़काने में काते काते घूमे वो
1: लड़काने में रात
0: वाकई सही आ। शाम जो टाइम जो शाम जो पहर हूँ ना वो सुठो आ घुमण फिरण लाए तो शाम जो निकरो रात जो निकरो दोस्तन सा कर एंजॉय कियो पांजी लाइफ के। जी जी जी बिल्कुल। अच्छा हाँ केड़ो गानो बुधायूं
1: मुझे दो
0: मुझो डो। अच्छा तो यो केन जो शायद बबर जो हां ठीक है मां प्ले करने की पूरी कोशिश किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जनाब। हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर फ्रॉम लड़काना और लड़काना वालों को एक बार फिर से हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। जनाब आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह हमारे साथ रहें। कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं तो आप हमें कॉल करें 03000 जनाब 1134888 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। के रहा कितना प्या गलायो मुस्तफा भाई के हाल चाल आई ताजी ईद की गुजरे।
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह सही लग गए सान।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह की गुजरी ताजी ईद छाछा खादो पीतो काते काते घुमण वियो
2: बदिते पांच शहर सिकरा थे जावे।
0: अच्छा माशाल्लाह त ठिकराटे में गर्मी अन्या شدید आहे जेरी सखर में आया थोड़ी घणी डर आता सर
2: डर आए काम भाई बंदालिया बजा दे
0: मरी व्यास यार कोई दुआ के तो बादल बजा वडा वडा अचानक कोई बरसात है
2: मुबारक
0: चो थैंक यू मुस्तफा भाई। थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह
0: हाफिज। जी जनाब हमारे साथ है मुस्तफा भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। ईद की एक बार फिर से तमाम दोस्तों को मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। कैसे
0: ठीक ठाक मुझे प्यारा भाई केरे सा सबनी सा गड वकास जतो साहब केड़ा हाल है ठीक ठाक है हो ईद मुबारक।
2: खैर
0: मुबारक खैर मुबारक। यो बुधायो ईद जो दिहाड़ो किए गुजारो था सुमी सुमी या
2: वरका सर तालाश पर थी गुजारो ना होता तो पनी में बैठा हूं संगत का प्रिय थे मिलो ना के मेरा खिदमत थी ना के जी वरी बो आसान जो टाइम रात जो।
0: अच्छा वाह वाह वाह सारी संगत कैसी तरफा ईद मुबारक चाहे जो थैंक यू। थैंक यू संगत मजो इन जी गोठ में उताक खुलियल हूँ कचहरी होंद ईद की गाल वो मजो इन शो क्यों सही सही सही। अच्छा ये बुधाओ शायद जबर जो गाना तो बुधाया कें नारा से करना चाहो हर जुमे टे प्रोग्राम लगातार कमीद जहा पंज का सते टे थैंक यू सो मच दादा तुम भी खुश रहो संगत भी खुश रहे बुझा रहो। थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब बहुत प्यारे से लिस्नर जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर हम एंजॉय कर रहे हैं। जनाब ये बात होती है ना कि गांव की कुछ बातें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं जो कि हमेशा याद रह जाती है, तो गांव का अपना ही चस्स है। तो जनाब गांव में बैठकर प्रोग्राम एंजॉय करना दोस्तों के साथ वक्री टाइप का जबरदस्त मजा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम मतलब जनाब।
0: कौन हमारे साथ इतना जल्दबाज बंदा? अच्छा मोहम्मद दीन साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक आए हो? खैर मुबारक मेरे प्यारे से भाई, आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है आपकी ईद? इतनी स्पीड से गुजर रही है
3: माशाल्लाह।
0: गर्मी शदीद है, गर्मी का तो हर कोई शिकायत कर रहा है, गर्मी बहुत शदीद है। जी जी।
3: और मैं दोस्तों के साथ सलाम दूंगा सर, बिरसागर यूजर।
0: हाँ।
3: और मैं अपनी पूरी टीम को जो आपके पास सुन रही है।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बहुत प्यारे से और बहुत जबरदस्त से और बहुत जल्दबाज से भाई हमारे साथ मौजूद थे। आते ही ईद मुबारक, आते ही दोस्तों के नाम, क्या बात है जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपका स्टाइल। और गर्मी है ना तो हर बंदा बोलता है कॉल करके डेडिकेशन करके जान छुड़ाऊं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अच्छा क्या चल रहा है?
0: ठीक ठाक, मुझे प्यारा भाग कह रहा सबरी सागर। सोना खान मस्तोई साहब फ्रॉम जैकमाबाद, मैंने सुना है जैकमाबाद की गर्मी बड़ी तेज होती है यार।
3: जी जी बिल्कुल सर, आज भी बड़ी गर्मी थी, बस क्या करें, आज का जो ईदी का दिन था वो हमने बड़ा अच्छा अपने बच्चों के साथ हमने गुजारा था।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया है और जबरदस्त तरीके से आप ईद का दिन गुजारे। ये बताओ क्या क्या खाया पकाया, क्या क्या स्पेशल डिशेज बनाई?
3: बिल्कुल, हमने जो है ना जो अपना कीमा बनाया था अभी, इसका बड़े दोस्त गए।
0: वाह वाह, जालमो अकेले अकेले खा गए?
3: अभी अभी जो है ना हम जो रात के लिए हम जो है ना अपनी बिरयानी पकवा रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बिरयानी भी खाएं, कीमे भी खाएं, कबाब भी खाएं और जनाब कलेजियां भी खाएं, एंजॉय करें बस ईद को, एंजॉय करने का नाम है।
3: और कल वाला दिन जो है ना आज के लिए हम गिफ्ट भेजेंगे
0: इंशाल्लाह। अच्छा थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें गिफ्ट भेजेंगे, और वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन थैंक यू सो मच एडवांस में। और ये बताओ कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है?
3: जी बिल्कुल, शो आपका अच्छा है सर, आपका जो शो सारे दिन फुल शो जो है सारे आप चले थे सब हमारे फैमिली में सुना था, और हम तो बाहर से रह गए, आप जब हम आए आप तो हम अपने घर तक सुनाई थी, हमने खुद ही उठाया है, मैंने कहा अच्छा बाइक प्रोग्राम चल रहा है, हमने काम नहीं करेंगे ये तो अच्छा ही नहीं होता।
0: और पता है मेरा ईद के तीनों दिन प्रोग्राम चलेगा 5 से 7। क्योंकि जी एफ एम एटी एक नेटवर्क आपकी हर ईद को ज्यादा शानदार बना देता है, आपके हर दिन को शानदार बनाता है।
3: जी जी बिल्कुल, जो बनाता है हम भी एटी एक के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, शायद अली बब्बर का है, सुख सारा हलियता लिखी दिया दुखन जुमास में बार। किसके नाम करना चाहते हैं? जी जी जी जी जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जी,
3: और सर कल वाले जो है ना प्रोग्राम किसी फेमिल आरजी को अपने साथ ले आओ सर कल वाले शो में।
0: अच्छा चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर
3: इंशाल्लाह,
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ जब मैं अकेला शो कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे मतलब को आरजेस भी बहुत अच्छा शो करती है, लेकिन जब मैं खुद कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है, लेते हैं शो की ये कॉल, कौन देखते हैं लाइन पे कौन है, अपने कॉलर को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कॉलर तो बात नहीं कर रहे, लगता है नाराज हो गए हमसे, आप हमें कॉल करें 03000113488 पर हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, और हम आई थिंक गाना प्ले कर दें, बहुत प्यारा सा गाना है सर मेरे पास मौजूद है, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, आपने इस गाने को जरूर सुनना है, शायद अली बब्बर का, और मैं हमेशा ही गुनगुनाता रहता हूं, तो आप भी गुनगुनाएं और ईद के दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तमाम दोस्तों को वंस अगैन ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, इस गाने के बाद दोबारा से आते हैं।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 ऐ 0242-460100

0: ईदुल उज़ा जे पुरमुसरत मौके ते मेहरान आयरन स्टोर हालाणी जे प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल तरफा पांजन समूरन कस्टमर्स दोस्तन ऐं अज़ीज़न वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां मुबारकबाद पेश कजे थी।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई पई वञे। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में सूरत इब्राहिमी ते जानवरनि जी क़ुर्बानी जो सिलसिलो बि जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में ईद नमाज़ अदा कई। वज़ीर शहबाज़ शरीफ़ लाहौर में ईद जी नमाज़ पढ़ी। नंढनि वॾनि शहरनि में ईद नमाज़ जे मेड़ाकनि दौरान सिंध समेत समूरे मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं सलामती लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। केटीएन न्यूज़ तरफ़ां आलम इस्लाम खे ईद जूं वाधायूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो सदर मुमलिकत टिन्ही हथियार बंद फ़ौजनि जे सरबराहनि मुख़्तलिफ़ हुकूमती ऐं सियासी अॻुवाणनि सां फ़ोन ते राब्तो। सभिनी खे ईद वाधायूं ॾिनियूं। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिफ़ मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऐं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ खे फ़ोन करे ईद जी मुबारकबाद ॾिनी। हथियारबंद फ़ौज जे पेशावरनि सलाहियतनि ऐं क़ौमी सलामती लाइ ख़िदमतनि तोड़ी क़ुर्बानीनि जी साराह। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चइनि सूबनि जे गवर्नर वॾनि वज़ीरनि क़ौमी असेंबली जे स्पीकर रिया सारे गिलगित जे वॾे वज़ीर ऐं ॿियनि सां बि फ़ोन ते राब्तो करे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं ऐं मुल्क जी मजमूई सियासी सूरतहाल ते ख़ैरत जी ॾे वठि कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त हुकूमत अवाम खे वधि खां वधि रिलीफ़ फराहम करण जी कोशिशि करे रही आहे। अल्ला ताला पाकिस्तान खे अमन, तरक़ी ऐं ख़ुशहाली अदा फरमाए ऐं क़ौम खे एकेजी दौलत सां नवाज़े। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईद उल अज़हा बलूचिस्तान।

صدر آصف علی زرداری ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जूं क़ौम खे ईद उल अज़हा जूं वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त ईद उल अज़हा अतात इलाही सबर इख़लाक ऐं ईसार जो अज़ीम सबक ॾिए थी। हज़रत इब्राहिम अलसलाम ऐं हज़रत इस्माईल अलसलाम जी क़ुर्बानी मुसलमाननि लाइ मुशल राह आहे। क़ुर्बानी रुगो मज़हबी फ़र्ज़ न पर मुकमल अख़लाकी पैगाम आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त ईद उल अज़हा सुनत इब्राहिमी क़ुर्बानी ऐं ख़ुदा जी अतान जे दर्स ॾिए थी। आला मक़सद लाइ जान ख़्वाहिशूं ऐं मफ़ाद क़ुर्बान करणु ईमान जो महराज आहे। डिप्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर क़ौमी असेंबली रियाज़ सादिक, वफ़ाक़ी क़ौम वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां बि क़ौम खे ईद जूं वाधायूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मलेशियन हमनसब अनवर इब्राहिम सां ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं, नेक ख़्वाहिशनि जो बि इज़हार कयो। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ख़ते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे साराहियो। मलेशियन वज़ीर आज़म खे आगाही त दुआगो आहियां त शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म अमन क़दमनि जी हिमायत ते मलेशियन हमनसब जा प्रोग्राम।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100

0: ईद उल फितर के इन पुरम सरहद मौके से आशिक हुंडा मोटर्स इंडस बाईपास वेझो रेलवे लाइन मेहरापुर पारा सभी कस्टमर्स दोस्तन वतन अजीज के आवाम के दिल के गहराइन से ईद जो लख लख वाधायूं पेश करूं था।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।